FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने

0: है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको शिष्टाचार विषय पर विचार सुनवा रहे हैं।
2: शिष्ट आचरण ही शिष्टाचार है। यूं तो शिष्टाचार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, किंतु शिष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वार्तालाप है, जिससे व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव और शील आदि का आभास मिलता है। मित, मिष्ट और हित, ये तीनों ही वार्तालाप के मूल उत्कृष्ट तत्व हैं। किसी के साथ बोलते समय स्वयं ही नहीं बोलते जाना चाहिए, जहां तक संभव हो दूसरे को बोलने का अवसर देना चाहिए और स्वयं सुनना चाहिए, लेकिन सर्वथा चुप्पी साधे रहना भी गर्व अथवा दूसरे के प्रति उपेक्षा का सूचक है। जो भी बोला जाए उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो असत्य न हो, कटु न हो, उसमें किसी को उद्वेग न हो और किसी का

0: अहित न होता हो। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि गुरुजनों के साथ पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करना अशिष्टता माना जाता है। साथ ही ऐसी भाषा का प्रयोग जिसमें पांडित्य प्रदर्शन हो सामाजिक शिष्टाचार के विपरीत माना जाता है। परस्पर बातचीत में हमसे बोलने वाला जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा हो उससे भी सरल भाषा में बोलना उचित है। ग्राम्य भाषा का उत्तर शुद्ध साहित्यिक भाषा में, हिंदी का उत्तर अंग्रेजी में तभी क्षम्य है जब हम उन भाषाओं को न जानते हों। बोलते समय भाषा में व्याकरण के दोष से भी भाषा अशिष्ट हो जाती है। जहां कई व्यक्ति हों वहां दो व्यक्तियों का कानाफूसी करना या किसी ऐसी भाषा का उपयोग करना जिसे दूसरे न समझ सकें अशिष्टता कहलाती है। परस्पर परिहास का भी अपना अलग स्थान है और शिष्ट परिहास कुशल व्यक्ति लोगों का प्रिय पात्र भी बन जाता है, किंतु इस तरह के परिहास में किसी पर आक्षेप, किसी को कष्ट, ग्लानि या संकोच हो तो ये अशिष्टता है। दो व्यक्ति परस्पर बातें कर रहे हों तो बीच में बहुत आवश्यक होने पर ही बोलना चाहिए। बिना पूछे सम्मति देना शिष्टाचार के एकदम विपरीत है। आगत व्यक्ति को आसन दिए बिना ही परिचय या उद्देश्य पूछना भी अशिष्टता है। जब आगत व्यक्ति स्वस्थ स्थिति में बैठ जाए तभी प्रश्न करना चाहिए। परिचित व्यक्ति घर के सदस्यों या संबंधियों से जो बाहर से आए हों, बाहर के समाचार जानने की उत्कंठा स्वाभाविक है, किंतु शिष्टाचार है कि आगत के लिए पहले उसके बैठने, स्नान, भोजन आदि की व्यवस्था होने पर ही प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार मधुर और संयत बोलने वाला व्यक्ति शिष्ट कहा जाता है तथा वो सबका प्रिय और आदरणीय बन जाता है।
1: अभी आपने शिष्टाचार विषय पर आज के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब ईस्ट वंदन के साथ शुभारंभ करें आज की आराधना।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने पवन पुत्र हनुमान का भजन सुना। आइए अगली प्रस्तुति में एक ऐसा भजन जो ईश्वर की महिमा और संसार की विशालता को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाता है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उस परम शक्ति का बोध कराता है।

कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। भक्ति रस से सरोबार ये भजन आपके मन को शांति और आनंद से भर देगा। आइए सुनते हैं।

ईश्वर की इच्छा में ही अपनी खुशी ढूंढना सच्ची भक्ति है। इसी सुंदर भाव के साथ आइए सुनते हैं अगला भक्ति वंदन। सीताराम सीताराम कहिए।

और आइए अब कार्यक्रम के समापन में शक्ति की देवी माँ भवानी के चरणों में वंदन करते हुए सुनते हैं ये ओजस्वी भजन। भक्ति और शक्ति का ये संगम आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा।

इसी भजन के साथ हमारी आज की आराधना अब यहीं पर संपन्न हुई। आज कार्यक्रम में आपने नितिन मुकेश मन्नाटे, गीतांजलि, ओम व्यास और पंडित भीमसेन जोशी के गाए भजनों को सुना। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आज की बात। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। आज तारीख है 12 मई। इतिहास का वो पन्ना जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा क्या होती है, और ये भी बताता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने की तैयारी कैसे शुरू हुई थी। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की, जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। दुनिया की 80% खाद्य सामग्री पौधों से आती है। अगर पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी वैश्विक भूख को समाप्त किया जा सकता है। पौधे हमें 98% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उनकी सुरक्षा सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में पहली बार इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया था। हर साल दुनिया भर में लगभग 40% खाद्य फसलें कीटों और बीमारियों के कारण नष्ट हो जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को भारी नुकसान होता है। हम अक्सर अपने सेहत की फिक्र करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हमारे आसपास के ये हरे भरे पौधे बीमार पड़ गए तो हमारा अस्तित्व क्या होगा? आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने पर्यावरण और इन मूक पौधों की रक्षा करेंगे। और श्रोताओं, अब बात उसे

ऐतिहासिक जीत के दस्तक की, जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज ही के दिन सन 1953 में शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए अपना अंतिम अभियान शुरू किया था। कुछ ही दिनों बाद दुनिया ने वो करिश्मा देखा जिसका सपना हर पर्वतारोही देखता है। आज के दिन एक दुखद याद लेकर भी आता है। सन 2008 में चीन के सिचुआन में आए भीषण भूकंप ने दुनिया भर को झकझोर दिया था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज का दिन राजस्थान की वीर धरा के लिए भी बहुत खास है। आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1459 को राव जोधा ने मारवाड़ की राजधानी के रूप में जोधपुर शहर की नींव रखी थी। आज ही के दिन चिड़ियाटूक पहाड़ी पर विशाल मेहरानगढ़ किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो आज भी अपनी मजबूती और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर अपनी संस्कृति, मेहमान नवाजी और नीले रंग के घरों की वजह से आज विश्व पर्यटन के नक्शे पर चमक रहा है। आज का दिन मानवता और सेवा के नाम भी है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज जन्म हुआ था आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्मी इस महिला ने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की जो सेवा की, उसने सेवा की परिभाषा ही बदल दी। बात सिर्फ नर्सिंग की ही नहीं है, आज कुछ और दिग्गजों का भी जन्मदिन है। महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु जय कृष्णमूर्ति की आज जन्मतिथि है, जिन्होंने कहा था कि सच्चा अनुशासन ही स्वतंत्रता है। जय कृष्णमूर्ति मानसिक क्रांति, बुद्धि की प्रकृति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, इन विषयों के बहुत ही गहरे विशेषज्ञ थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्य एक मार्गरहित भूमि है और उस तक किसी भी औपचारिक धर्म, दर्शन या संप्रदाय के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। आज भारत के पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता, नंदू नाटेकर, उनकी भी जन्मतिथि है। उन्होंने ये उपलब्धि सन 1956 में हासिल की थी। उन्हें 1961 में भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जाते जाते हम उन्हें भी याद करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन इस संसार को अलविदा कहा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी कविताओं की गहराई आज भी साहित्य अनुरागियों के दिलों में जिंदा है। तो श्रोताओं, 12 मई का इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे आप पर्वत की ऊंचाई पर हो या किसी मरीज की सेवा में, आपकी निष्ठा ही आपके इतिहास का, आपको इतिहास का हिस्सा बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास के नए पन्नों के साथ। विभू कृष्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के इस अंक में मैं विभू कृष्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस महिला की जिसने एक हाथ में लालटेन लेकर नर्सिंग के पेशे की किस्मत बदल दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस का जन्म 1820 में इटली के फ्लोरेंस शहर के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उनके पास ऐशोआराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ईश्वर ने मुझे पुकारा है और उनकी सेवा का मार्ग दिखाया है। उस जमाने में अच्छे घर की लड़कियां केवल शादियां या फिर अन्य कार्यों को करती थी, लेकिन फ्लोरेंस ने नर्सिंग चुनी। तब नर्सिंग को एक नीचा काम माना जाता था। उनके परिवार ने विरोध किया, पर फ्लोरेंस रुकी नहीं। बात 1854 की है, क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। जब फ्लोरेंस अस्पताल पहुंची तो वहां का नज़ारा भयानक था। सैनिक घावों से नहीं बल्कि गंदगी और संक्रमण से मर रहे थे। यहां चारों तरफ चूहे, पानी गंदा और फर्श खून से सना हुआ। ऐसे में अगर सफाई नहीं की तो ये वीर बिना लड़े ही दम तोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फ्लोरेंस ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे अस्पताल को रगड़ कर साफ किया, ताज़ी हवा और पौष्टिक खाने का इंतज़ाम किया। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, फ्लोरेंस हाथ में एक लालटेन लेकर मीलों लंबे वार्डों में चक्कर लगाती।

ताकि किसी मरीज को तकलीफ ना हो। यहीं से उन्हें नाम मिला द लेडी विद द लैम्प। श्रोताओं, फ्लोरेंस केवल एक नर्स नहीं थी, वो एक शानदार गणितज्ञ भी थी। उन्होंने पोलर एरिया डायग्राम का आविष्कार किया ताकि वे आंकड़ों से समझा सकें कि अस्पताल में स्वच्छता कितनी जरूरी है। उनके प्रयासों से सैनिकों की मृत्यु दर 42% से घटकर मात्र 2% रह गई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बना दिया। उन्होंने लंदन में नाइटिंगेल स्कूल ट्रेनिंग का खोला, जो दुनिया का पहला वैज्ञानिक नर्सिंग स्कूल था। उनके इसी समर्पण और आधुनिक नर्सिंग की नींव रखने के सम्मान में 12 मई जो फ्लोरेंस का जन्मदिन है को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी नर्स को देखें तो याद रखिएगा कि उस सफ़ेद वर्दी के पीछे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वही निस्वार्थ भावना और बहादुरी छिपी है। सलाम है उन सभी को जो अपनी परवाह किए बिना हमारी जान बचाते हैं। विविधा के आज के इस अंक में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप कुछ ही पलों में, माफ कीजिएगा, प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम एलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद

मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय

0: मंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 खेल दर्पण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षण उपरांत 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 91। 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पौधों के स्वास्थ्य के माध्यम से एक स्वास्थ्य विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ललित मोहन सिंह जलाल। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा महिलाओं से जुड़ा आकाशवाणी और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष विषय पर श्रोता बहनों से गुड्डी नयाल की बातचीत। 1:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1282 प्रसारित की जाएगी। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दिन के 2:30 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग लक्षण और उपचार। जानकारी देंगे डॉक्टर के मिश्रा। 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आप सुनिएगा इस कार्यक्रम में हुनर को बनाए रोजगार विषय पर वार्ता। साथ ही सुनिएगा यातायात नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी पर वार्ता। वार्ताकार हैं बरखा कनवाल। 5:45 पर उत्तरायण प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य

स्वास्थ्य दिवस पर चर्चा। शाम 7 बजे किसान बाड़ी कार्यक्रम में आज की बातें में आप सुनेंगे उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे। साथ ही चर्चा होगी आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग पर। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में, 11:30 पर लोकसुर, दिन के 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैलस्वर के तहत। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 10:05 पर सबरंग, दिन के 1:15 पर सुगम संगीत, रात्रि 8 बजे सबरस कार्यक्रम के तहत। और भक्ति संगीत शाम 6:41 पर प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुर बहार में आप सुनेंगे एक ही फिल्म के नगमे, 11 बजे सैनिकों के लिए, दिन के 12 बजे मेरी पसंद में, दिन का 2:45 पर फिल्म संगीत में सुनिएगा एक ही फनकार को, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में और शाम 7:40 पर फिल्म संगीत में। और श्रोताओं, आज है मंगलवार तो आज आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर गज़लों का फरमाइशी कार्यक्रम महफिल। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 91।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृंदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पर आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। कुंभ मेला 2027 के लिए गंगा की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने को केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारम्भ और राज्य के पर्वतीय जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। श्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के

0: स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत गंगा की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गंगा नदी की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय प्रदेश सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि चारधाम हेली यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।
1: DGCA के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो एस्टेब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, वहाँ पे DGCA के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो ATC के कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशन को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं या सिक्योरिटी के दृष्टिगत तो और जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेके भी लगातार उस पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा भी मल्टीपल एविएशन सेक्टर के जो मैटर्स होते हैं उनको ये लगातार मॉनिटर करता है और डील करता है, तो इससे कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से या सेफ तरीके से यात्रा को इंश्योर करने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है।
0: यूकाडा के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 21,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से चार धाम यात्रा कर चुके हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 11 में महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना भी है।
3: माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निवेश है कि जो भी केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, वो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हम लोग नगर निगम में समस्याएं सुनते हैं, अभी नगर निगम में आ रखते हैं, हमारे यहाँ सारे विभागों के अधिकारी भी बैठ रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, जो काम पर जाती हैं जो नहीं पहुँच पाती है। तो आज हमने तय किया था कि हर सोमवार को अब हम अपने विभागों के साथ जो हमारे जिले के प्रमुख विभाग हैं, पूर्ति विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, बिजली विभाग है, इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो आज पहली बार वार्ड नंबर 11 संजय नगर में आपका मेयर आपके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
0: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में गुरु शिष्य परंपरा के तहत भव्य शास्त्रीय संगीत समारोह 2026 का आयोजन किया गया। समारोह में देश के प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत वादकों और गायकों के साथ स्थानीय संगीत प्रेमियों और संगीतज्ञों ने भी भाग लिया। समारोह की मुख्य शास्त्रीय गायिका आकाशवाणी लखनऊ और वाराणसी की पूर्व कार्यक्रम निदेशक रश्मि चौधरी ने रागपुरिया, खमाज और दादरा की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। इस अवसर पर प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका रश्मि चौधरी ने कहा कि संगीत की रोशनी निरंतर जलती रहे, इसी संकल्प के साथ इस शास्त्रीय संगीत समारोह की शुरुआत की गई।
4: खासतौर से इंटीरियर ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार नहीं पहुँच पाते, तो उनको यहाँ तक लाना, बच्चों को दिखाना कि ये किस तरह से संगीत की सेवा की जाती है और किस तरह से लोग कितनी मेहनत करते हैं तब इस ऊँचाई तक पहुँच पाते हैं, तो ऐसे कलाकारों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना, लाना, जो नई पीढ़ी है उनको समझाने की बात है। और जैसे वो यहाँ आ करके उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया और वो शिष्य और शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, तो हमारी भी गुरु, चूँकि मैंने भी संगीत सीखा, मेरा वोकल है, तो मेरी गुरु कहती थी कि एक दिया यदि मैंने जला दिया वो दिया अनेक दिया जला सकता है, तो ये रोशनी हमेशा जलती रहे, यही संकल्प के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है।
0: मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो

0: अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग के अनुसार इस अवधि में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की भी सलाह दी गई है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न वैश्विक व्यवधानों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है, 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री ने की तेल गैस बचाने की अपील। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करेंगे। हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। अमर उजाला ने लिखा है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। कुंभ मेला 2027 के लिए गंगा की स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने को केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में महापौर जनता के द्वार अभियान का शुभारम्भ। और राज्य के पर्वतीय जिलों में अगले 36 घंटे के दौरान भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं गोपाल सिंह चमियाल।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो?
1: मार्केट ट्रेंड सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
2: ये दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो।
5: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह चमियाल और साथियों के गाए कुमावनी लोकगीत।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
3: सॉरी,
2: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
3: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
2: मतलब
3: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
4: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोपाल सिंह चमियाल और साथियों के गाए कुमावनी लोकगीत।

गोपाल सिंह चमियाल और साथियों के गाए इसी जोड़े के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: अभी आप लोकमंजरी कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब हिंदी कार्यक्रम में सुनते हैं पौधों के स्वास्थ्य के माध्यम से एक स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर ललित मोहन सिंह जलाल की वार्ता।
1: अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई 2026 पृथ्वी पर मानव तथा अन्य प्राणियों और वनस्पतियों यानी पादपों का परस्पर गहरा संबंध रहा है। मानव ने जंतुओं और पादपों से अपने लिए उपयोगिता के आधार पर उनकी पहचान कर अपने उपयोग में लाना तथा उन्हें संरक्षित करना प्रारंभ किया। वैदिक काल से ही लोक जीवन में पादपों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो आज भी परिवर्तित रूप में दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद का औषधि सूक्त पादपों के संदर्भ में वैदिक काल का प्रमाणित प्रलेख है। अथर्ववेद में पादपों का वर्गीकरण और अधिक उन्नत रूप में दिखाई देता है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता

में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के मौलिक ग्रंथों में इन दोनों का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, अर्थात वेदों के संदर्भों से विदित होता है कि वैदिक काल में पादपों यानी वनस्पतियों का स्थान अति महत्वपूर्ण था, परंतु वर्तमान में मनुष्यों की अति लालसा ने पादपों के स्वास्थ्य को अपने निजी हितों के लिए छिन्न भिन्न कर दिया। वृक्षों द्वारा ही जीवन संभव है, यानी मानव अपने जीवन यापन हेतु पूर्ण रूप से वृक्षों यानी पादपों पर निर्भर है, चाहे अन्न हो, दवा हो या जीवनदायिनी ऑक्सीजन, अनेकों अनेक पदार्थ हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि प्लांट्स आर लाइफ, पादप ही जीवन है, मतलब पृथ्वी पर 80% भोजन और 98% ऑक्सीजन पौधों से ही मिलती है, लेकिन आमतौर पर हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि पादप भी बीमार पड़ते हैं। इसकी कोई ठोस कार्य योजना हमारे पास नहीं है। फफूंद, फंगस, वायरस, कीट यानी इंसेक्ट, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन से प्रतिवर्ष विश्व को 40% फसल नष्ट हो जाती है। इसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए पादपों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस घोषित किया है। पहली बार यह दिवस 2022 को मनाया गया। अब प्रश्न उठता है कि 12 मई को ही क्यों? तो इसका सीधा सा उत्तर है, मई का महीना उत्तरी गोलार्ध में बुआई का समय होता है। इसी समय पादपों को कीट रोग से बचाने का संदेश सबसे जरूरी होता है। इस वर्ष की थीम है वन हेल्थ थ्रू प्लांट हेल्थ, यानी पौधे, मनुष्यों, जीव जंतुओं और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने कहा था, प्रकृति के पास सबकी जरूरत पूरा करने को है, लालच पूरा करने के लिए नहीं। हमने ज़्यादा पैदावार व जल्दी पैदावार के लालच में जहर घोल दिया, नतीजा कैंसर रोग, बंजर जमीन और कर्ज में डूबा हुआ किसान, इसके कुछ उदाहरण है। अब इसके मुख्य बिंदु पर आते हैं, आखिर पादप क्यों बीमार पड़ते हैं? इसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं, कीट और कीट रोग, धान का ब्लास्ट, गेहूं का रतुआ, कपास का गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी, गन्ना का लाल सड़न, टमाटर मिर्च का लीप कर्ल वायरस, निमेटोड, ये तो मात्र कुछ उदाहरण स्वरूप हैं। अब चर्चा करते हैं भारत में पादप स्वास्थ्य की भयावह तस्वीर पर। 1943 में बंगाल में अकाल, जिसमें धान के भूरा रोग से लगभग 30 लाख मौतें हुई थी। 1970 में गेहूं के काले रतुए के कारण हरित क्रांति खतरे में पड़ गई थी। 2015 में सफ़ेद मक्खी के कारण पंजाब हरियाणा में फसल बर्बाद हुई, जिसमें लगभग 15 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। 2018 में हॉल आर्मी वर्म कर्नाटक से शुरू होकर 20 राज्यों में मक्के की फसल को चट कर गया था। 2020 में टिड्डी दल ने राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद कर दी थी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 2.5 लाख करोड़ की फसल कीट रोग से नष्ट हो जाती है। CABI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से 2030 तक भारत में कीट रोग 20% तक बढ़ेंगे। अब हम एक दो मुख्य पादपों का जिक्र करते हैं जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं, जिसमें पहला नाम है नीम, अजार्टिरिक्टा इंडिका, जिसके पत्तियों के अर्क को मलेरिया, लू तथा पेट के कीड़े मारने में पिलाते हैं। नीम के बीजों से जो तेल निकलता है उससे पायल से रोग में आराम मिलता है। नीम के फूल पत्तियों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीने से फुंसियाँ, खुजली तथा त्वचा रोगों में आराम मिलता है। टहनी दातुन के रूप में प्रयोग की जाती है। नीम के तेल का छिड़काव करने से कीट आदि नष्ट हो जाते हैं तथा अनाज भंडारण में भी नीम की पत्तियाँ काफ़ी कारगर हैं। इसके साथ ही एक वयस्क नीम का पेड़ 10 AC के बराबर ठंडक देता है और 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। अब बात करते हैं पीपल यानी फिकस रिलीजियोसा यानी वृक्षों का राजा। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। विज्ञान और अध्यात्म दोनों में सबसे ताकतवर पेड़ माना जाता है। जहाँ ज़्यादातर पादप रात में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं, वही यह हमें ऑक्सीजन यानी O2 प्रदान करता है, यानी यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए इसे ऑक्सीजन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। एक बड़ा पीपल वृक्ष दिन में 1700 kg O2 बनाता है। इसे नेचुरल एयर प्यूरीफायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसके पत्ते खांसी व अस्थमा में प्रयोग किए जाते हैं। छाल, डायरिया व डायबिटीज में, फल, कब्ज, बीज, मूत्र रोग आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यह बाढ़ व भूस्खलन को रोकता है। वाटर रिचार्ज में बहुत ही उपयोगी है। नासा की एक स्टडी में बताया गया है कि पीपल जैसी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हीट वेव को 30% तक कम कर देते हैं। एक पेड़ AC जितनी ठंडक देता है। इसे जैव विविधता का घर, की स्टोन ट्री के नाम से भी जाना जाता है।
अब प्रश्न उठता है

0: पादपों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या करें? प्रमाणित और उपचारित बीज ही बोएं, एक ही खेत में हर वर्ष अलग अलग फसल बोएं, जिसे हम मोनोकल्चर के नाम से जानते हैं। मित्र कीटों को अधिक से अधिक पालें, सही समय पर बुआई करें, विदेश से फल फूल पौधे बिना जांच के न लाएं, रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचें, जैविक खेती को अपनाएं, नकली कीटनाशकों से बचें, कीटनाशक की जगह नीम अपनाएं, खेत में पानी न रुकने दें, बीज उपचार हेतु नीम तेल का प्रयोग करें, गहरी जुताई करें, मिट्टी सोलराइजेशन यानी खेत साफ रखें, बर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आइए अब पादप स्वास्थ्य दिवस पर कुछ नवाचारी कार्यक्रम अपना कर इस अभियान को सफल बनाएं। विद्यालयों में प्लांट क्लिनिक मॉडल, बीज बॉल अभियान, निबंध पोस्टर, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, पौधारोपण अभियान, नीम तुलसी पीपल सहजन आदि का नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली, जिसमें रसायन कम जैविक ज़्यादा का संदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रदर्शनी लगाकर किसानों को जागरूक करना होगा। कुछ स्लोगनों के माध्यम से जागरूक किया जा सकता है। मिट्टी का डॉक्टर बने, धरती का कर्ज चुकाएं, जहर नहीं जीवन चुनें, जैविक अपनाएं, स्वस्थ पौधा सुरक्षित भोजन, सुनहरा कल, वृक्ष है तो जीवन है, जब पौधा मुस्कुराएगा तभी किसान और देश मुस्कुराएगा। यह वह दिन है जो हमें याद दिलाता है कि पौधों को स्वस्थ रखकर ही मनुष्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसका मकसद लोगों को यह बताना है कि यदि पौधे बीमार होंगे तो इंसान भी बीमार होगा। आइए संकल्प लें, अपने घर में एक पौधा अवश्य लगाएं, वो उसकी देखभाल करें और रासायनिक जहर से बचाएं, क्योंकि पौधा बचेगा तभी जीवन बचेगा। अगर हम पौधों को बेटे की तरह पालेंगे तो वह भी माँ की तरह हमें भोजन देगा। पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ 12 मई नहीं हर दिन है, यह हमें प्रण करना है। 12 मई का नारा है, पादप स्वास्थ्य सबसे प्यारा है।
1: पौधों के स्वास्थ्य के माध्यम से एक स्वास्थ्य विषय पर अभी आपने डॉक्टर ललित मोहन सिंह जलाल की वार्ता सुनी। इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है।

0: पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन

0: करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान

0: की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमरीका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill the responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
4: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be

0: अभी आपने डॉक्टर पूनम जोशी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव सुना। आपके साथ तबले पर संगत की थी तरुण रॉय ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला एक पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया।

0: के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्री परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं आपके फरमाइशी पत्रों, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल और फरमाइशी गीतों के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर में। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पानी की बूंद अगर तवे पर गिरती है तो गायब हो जाती है, वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर पानी की बूंद सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। अगर हमारी सोच, नज़रिया और संगत सब कुछ अच्छा होगा तो हमारी ज़िंदगी, हमारे आसपास का जो नज़ारा है वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आइए आज की सुबह को शुरू करते हैं इस गीत के साथ। आप सबकी नज़र

आराधना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा था SD बर्मन ने, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कलिया। इसी गीत को पसंद किया भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और हर्ष आहूजा। मेन रोड तिलहरा से इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील और सुजाता ने। आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में अनामिका फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है RD बर्मन ने, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल, अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। इसी गीत के लिए हमें खत भेजा है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, लाडो, कोयल, नानक चंद। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविका। दौलतबाग मुरादाबाद से जाकर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। और चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफाज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार। छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या और हेमलता डिंपल देवांगन। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ज्वेल थीप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना मजरो सुल्तानपुरी की है और संगीत निर्देशन किया है SD बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया अम्बालागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान ने। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना चंडीगढ़ से ही, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, इंद्रा बिहार रायगढ़ से, अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम वलीउल्ला, राजनाथ गांव से याकूब, यूसुफ इमरान और इरफान, और जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, यादव मोहल्ला मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकर, योगेश, सुनीता और मुस्कान। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh, with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रही हैं आपका अपना फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, और मैं हूं आपके साथ विभू। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में।

शामिल करते हैं अगला फरमाइश गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म से। शैलेंद्र के लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को पसंद किया है सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन बेगम इशरत रुबीना आरिज रानी शर्मा ममता पूनम कुमारी अरहान हमजा मुजम्मिल हुमैरा सुमैरा अबीहा शाहीन नाजिया नूरी बच्चू शेख और चीना शेख। इसी गीत को पसंद किया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा स्वीटी छाबड़ा ने। बिहार कॉलोनी लोनी से इस गीत को पसंद किया परवीन डोम सरफुद्दीन वली डोम मथुरा से वसीम आसमा वेलदार अक्रम आसमा उल्लाह आसमा और सुरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा सोनम थापा रेशम और आदिबा थापा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

दिल अपना और प्रीत पराई, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म धूल का फूल। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है एम दत्ता ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम लोहारी खंडवा से राहुल कुमार धंजे, राजेश, विशाल, शीला और गायत्री धंजे, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। इसी गीत को पसंद किया है डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी। भोपालगढ़ राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहते हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान और पूजा परिहार। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड। इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, संजना, परी, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

इसी गीत को पसंद किया छत्तीसगढ़ मुंगेरी से मोहम्मद इशाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आमिर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: पीछे
1: मार्केट ट्रेंड
0: सुनने में आया कि
2: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
2: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: ये दोस्त ने बोला
3: देवी जी की सुनो
4: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
6: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज
7: मीट द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.72 lakhs
6: यस ₹9.72 lakhs ऑफर वैलिड टिल 31st मे ओन दिस स्टाइल आइकन एट एन ईएमआई ऑफ जस्ट ₹8.99 पर मंथ
7: एक्सपीरियंस लग्जरी विद अ पैनोरामिक सनरूफ वेंटिलेटेड सीट्स 360 डिग्री व्यू कैमरा हेड्स अप डिस्प्ले and 6 airbags as standard.
6: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
8: अरे market trend देखा? हाँ क्या? News देख और online opinions भी.
9: Sorry?
8: सुन नहीं रहा है क्या? Performance की बात हो रही है.
9: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है.
8: मतलब?
9: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अनूप घोषाल का गाया गीत फिल्म मासूम से गुलजार के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है आरडी बर्मन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गंज टुटवारा से पप्पू भाई अफसाना बेगम महजबी शेख एम फारूक शेख फिरासत हुसैन मुनव्वर लल्ला शेख शमा परवीन अलकरम बेगम और मिर्जा नसरीन बेगम इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले आदेश कुमार काले प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन बिजनौर से इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी इकबाल सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी साजदा और हिना कौसर रहमानिया मोहल्ला सीतामणि बिहार से तलत जहानाज फरहत जहां रिफाकत नुजहत वसीम नदीम शमीम और अमन अकरम तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया गीत लिबास फिल्म से। गुलजार के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है आरडी बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोना और डॉक्टर आदिबा, सारीपुर बक्सर से डॉक्टर एसडी अंसारी, आसमा खातून और गुलफराज भागल। हरिद्वार से हमें फरमाइश भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और महराज जहां। तो दीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

0: presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं, काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही? इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरिस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरिस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की? आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। PNC अप्लाई।
9: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं अगला फरमाइशी गीत, जो हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मशाल से। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और संगीत निर्देशन किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जैज, वीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल, रानीगंज पश्चिम बंगाल से रेहान शर्मा, रोशनी, रवि, इंदर, करणदीप और भूपेन, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर और रियांश। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

इसी गीत को पसंद किया जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी खटक, पूजा खटक, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा, आरती अरोड़ा, हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार। तो आइए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज का अंतिम गीत आरती फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है रोशन ने और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक। अनारकली बाजार जगाराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, आशीष मनहोत्रा और सुच्चा। और राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मुन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब धीरे धीरे वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में चंद फरमाइशी फिल्मी नगमों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना नजरिया सकारात्मक रखिए। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप गीत निर्झर कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर

बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर

सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए विवा का गाया गीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.72 lakhs.
2: Yes, rupees 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa. इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरन, और आइए अब इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गई नज़्म।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग, और आइए अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की गई गजल।

भूपेंद्र सिंह की गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। पौड़ी जिले स्थित राजकीय महाविद्यालय पैठाणी को व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही रोजगार के अवसर मिल सकें। ये बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पैठाणी में राज्य का पहला व्यावसायिक महाविद्यालय खोला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां उद्योगों एवं बाजार की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। डॉक्टर रावत ने कहा कि अगले शैक्षिक सत्र से महाविद्यालय में बीटेक, बीएड, एमबीए एवं एमसीए जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हरिद्वार में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर मेला प्रशासन एवं रेलवे ने तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में हरिद्वार एवं नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार के साथ ही आधुनिक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित व्यवस्थाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मेलाधिकारी सोनिका ने रेलवे अधिकारियों से हरिद्वार सहित आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के साथ ही स्टेशन के सौंदर्यीकरण का आग्रह किया। आईआईटी रुड़की परिसर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप पत्रा ने कहा कि विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार केवल आधुनिक विकास के साधन नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचाने का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा समन्वित मॉडल विकसित करना चाहती है जो गांव, गरीब, किसान, छात्र और युवा सभी के जीवन को सशक्त करे। श्री बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया स्टार्टअप और इंडिया एआई विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत तेजी से वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी विज्ञान एवं तकनीकी आधारित विकास को दिशा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण एवं भाषा मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट कर राज्य में संचालित अल्पसंख्यक कल्याण योजना एवं विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान श्री खजान दास ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में संचालित परियोजनाओं की प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित नई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। श्री खजान दास ने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में लंबित मामलों एवं जांच प्रक्रिया से छात्रों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी देते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं को पुनः संचालित करने का आग्रह किया। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में चारों धामों के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सर्वाधिक 4,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 2,70,000, गंगोत्री में 1,65,000, यमुनोत्री में 1,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा चारों धामों के दर्शन के लिए यात्रा पंजीकरण की संख्या 32,75,000 से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर बहार।
2: वक्त कहाँ कोई थूसा।
1: सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेशे की जिसे दुनिया सेवा का दूसरा नाम मानती है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर हम याद करेंगे भारतीय सिनेमा की उस कालजयी फिल्म को जिसने नर्सों के सफ़ेद एप्रन के पीछे छिपे जज्बातों को पर्दे पर जीवंत कर दिया। जी हाँ, निर्देशक असिन सेन की 1969 की क्लासिक फिल्म खामोशी। आज एक ही फिल्म में हम आपको इसी क्लासिक फिल्म के अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे और सुनाएंगे इसी फिल्म की चंद की।
2: कभी तुम डार्लिंग, कभी महबूबा, कभी तुम भोली भाली सिस्टर। सिस्टर, दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई सिस्टर। चलेगी, जाने दो।

0: दोस्त कहाँ कोई तुम सा।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: घर

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर बहार। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है। ये दिवस उस महिला की जन्मतिथि और उसकी याद में मनाया जाता है जिसने एक हाथ में लालटेन लेकर नर्सिंग के पेशे की किस्मत बदल दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो हमने भी सोचा कि इस मौके पर आज भारतीय सिनेमा की उस कालजयी फिल्म का जिक्र करें जिसने नर्सों के जज्बात को पर्दे पर बड़े ही जीवंत तरीके से उतारा, जिसके निर्देशक असित सेन जी थे। खामोशी महज एक फिल्म नहीं, एक नर्स के मानसिक द्वंद की दास्ता है। वहीदा रहमान जी ने राधा के किरदार में ये दिखाया कि एक नर्स सिर्फ दवा ही नहीं देती, बल्कि वो मरीज को अपनी ममता और भावनाओं से भी सींचती है। अस्पताल के पागलखाने में काम करने वाली राधा अपने मरीजों को ठीक करने के लिए उनसे एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ती है। लेकिन क्या कोई सोचता है कि जब मरीज ठीक होकर चला जाता है तो उस नर्स के दिल पर क्या बीतती है? फिल्म का संगीत हेमंत कुमार जी ने दिया था और गुलजार साहब के लिखे बोल आज भी रूह को छू लेते हैं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई खामोश होने से पहले। आइए सुनते हैं वो गीत जो इस फिल्म की आत्मा है।

0: बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first in segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर बहार, और एक ही फिल्म में यादों के झरोखे से आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं जिस फिल्म ने खामोश रहकर भी बहुत कुछ हम सबको बताया है। जी हाँ, खामोशी, एक ऐसी फिल्म जिसमें रिश्तों की उलझन थी, भावनाओं का समंदर था, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का वो जादू जो आज के रंगीन दौर में भी फीका नहीं पड़ता। साल 1969 में आई निर्देशित असित सेन की मास्टरपीस खामोशी। खामोशी दरअसल असित सेन की ही बंगाली फिल्म दीप ज्वले जाई का हिंदी रीमेक थी। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो एक नर्स और उसके मरीज के बीच के उस धुंधले रिश्ते को दिखाती है जहां फर्ज और प्यार की लकीरें आपस में मिल जाती हैं। फिल्म की कहानी घूमती है नर्स राधा के इर्द गिर्द, जिसका किरदार निभाया था बेमिसाल वहीदा रहमान ने। राधा एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है जहां उसे मेनिया के मरीजों का इलाज अपनी ममता और नकली प्यार से करना होता है। लेकिन क्या कोई इंसान अपनी भावनाओं का अभिनय बार बार कर सकता है? जब राजेश खन्ना यानी अरुण की एंट्री होती है तो राधा एक बार फिर उसी इलाज का हिस्सा बनती है, पर इस बार खामोशी टूटती है और राधा खुद उन जज्बातों के भंवर में फंस जाती है जिनसे उसने दूसरों को निकाला था। वहीदा रहमान के करियर का शायद सबसे बेहतरीन अभिनय, उनकी आंखों में बसी वो उदासी ही फिल्म की जान है। बात खामोशी की हो तो हेमंत कुमार के संगीत और गुलजार साहब के शब्दों को कैसे भुलाया जा सकता है। ये सिर्फ गाने नहीं, ये रूह को छेद लेने वाली कविताएं हैं। किशोरदा की आवाज में वो शाम कुछ अजीब थी, आज भी तन्हाइयों का सबसे अच्छा साथी है।

श्रोताओं, खामोशी के अंत में राधा खुद अपना मानसिक संतुलन खो देती है। ये एक कड़वा सच है कि दूसरों को संभालते संभालते कभी कभी ये देखभाल करने वाले खुद टूट जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आइए हम अपने आसपास की नर्सों को सिर्फ सिस्टर न कहें, बल्कि उन्हें वो सम्मान और सहानुभूति भी दें जिसकी वो असल में हकदार हैं। आज सुरबहार कार्यक्रम की एक ही फिल्म में हमने आपको क्लासिक फिल्म खामोशी के चंद गीतों को सुनाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर किसी नए किरदार, नई फिल्म और गीतों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: से है, इज्जत बदन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले।
1: प्रेम पुजारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं खट्टा मीठा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गुलजार के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है राजेश रोशन ने।
2: हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता।
3: कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
2: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
3: सोचने दो।
2: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
2: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
3: तुम मुझे प्यार करते हो।
2: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
2: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
3: प्यार करते हो ना?
2: पर जरीन तुम
4: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए खुदा गवाह फिल्म से अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं चांदनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और बबला मेहता की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है शिव हरी ने।

लता मंगेशकर और बाबला मेहता के गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। फौजी भाइयों, जय हिंद।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए तारा सिंह लोधियाल के स्वर में लोकगीत।

लता पांडे और सखियों का गाया आपने कुमाऊनी लोकगीत अभी सुना, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं भरत सिंह नेगी।

लोक सुर कार्यक्रम उस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं और अब कुमाऊनी लोकगीत हम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं। कलाकार हैं विक्की।

लोक सुर कार्यक्रम में आप कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का आनंद इस समय ले रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से। आइए हीरा सिंह राणा के स्वर में एक कुमाऊनी लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही? इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की? आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू।
0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI

0: इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: डीजल क्यों?
1: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख?
0: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
1: काट दिया।
0: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: चंद्रदत्त सुयाल के स्वर में गढ़वाली लोकगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवा रहे हैं।

तो श्रोताओं, चंद्रदत्त सुयाल के गाय इसी गढ़वाली लोकगीत के साथ लोकसुर कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजुपांक्ति का स्नेहल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं को हमारे इस कार्यक्रम में। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दोतार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ बेहद खूबसूरत हैं, प्यार के लिए, जिंदगी के लिए। सच यही प्यार, यही प्रेम, स्नेह, लव, इश्क, मोहब्बत, कुछ भी कहिए, ये एक इबादत भी है, जीने की राह भी है, सब कुछ है। सुबह है, शाम है, जिंदगी सारी इसी में तमाम है। प्यार इस छोटे से शब्द की पहेली को बूझते बूझते सदियां गुजर गई, लेकिन ईश्वर की तरह ये भी अपरिभाषित, अव्यक्त और अबूझ ही रहा है। गीत, संगीत, किस्से, कहानियों से ये हमेशा व्यक्त होता रहेगा, होता रहा है और होता रहा था। और ये इश्क का कारवां, प्रेम मोहब्बत की दास्तां चलती रहेगी जब तक ये दुनिया है, प्यार करने वाले हैं, प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। प्यार का जिंदगी में आना एक खूबसूरत एहसास का पनपना, जिंदगी जीने का खूबसूरत एहसास, जैसे ख्वाबों का हकीकत हो जाना। और कहिए भी क्या, आखिर दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार तो क्या कीजिए। बहरहाल ये खूबसूरत प्यार से भरा गाना सुनिए।

सुश्रुतों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्में बेशक काल्पनिक कहानियों पर आधारित होती हैं, लेकिन कई ऐसी फिल्में बॉलीवुड में असल सच्ची कहानियों पर बनती रही हैं। समाज में व्याप्त विविध पहलुओं को छूती सत्य घटनाओं या फिर जिंदगी के सच्चे किस्सों की दास्तां हो, एक लंबी

काल्पनिक कहानियों पर आधारित होती हैं, लेकिन कई ऐसी फिल्में बॉलीवुड में असल सच्ची कहानियों पर बनती रही हैं। समाज में व्याप्त विविध पहलुओं को छूती सत्य घटनाओं या फिर जिंदगी के सच्चे किस्सों की दास्तां हो, एक लंबी फहरिस्त है इन फिल्मों की। और ऐसी फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा है, खूब प्यार दिया है। और आज के नए दौर की हम बात करें, यूं तो पुराने दौर से ये चला आ रहा है, लेकिन हम नए दौर की कुछ बेमिसाल सच्ची प्रेम कहानियों से प्रेरित फिल्मों के चुनिंदा नगमों को लेकर आए हैं मेरी पसंद में। तो सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ टू स्टेट्स फिल्म को, और ये फिल्म लेखक चेतक, जाने माने मशहूर लेखक चेतन भगत और उनकी पत्नी अनुष्का भगत की लव स्टोरी पर बेस्ड है। चेतन भगत ने पहले इसी नाम से किताब लिखी, बाद में इसी कहानी को लेकर फिल्म बनी जो बेहद हिट रही, दर्शकों ने इसे बहुत प्यार दिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, टू स्टेट्स, और ये फिल्म दो राज्यों के रहने वालों के प्यार पर आधारित है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिका में रहे हैं। गाने इस फिल्म के खूब चर्चित रहे, आप भी गुनगुनाइए टू स्टेट्स के इस गाने के संग।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, यूं तो प्यार के रंग हैं हजार, और ऐसा प्यार जो मिसाल बन गया हर प्यार करने वाले के लिए। प्यार में चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें अक्सर हमने सुनी हैं, जो सिर्फ कोरी बातें ही हैं। लेकिन एक ऐसा सच में इंसान भी था जिसने प्यार की दीवानगी और जुनून का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया, और उन्हीं पर फिल्म बनी मांझी द माउंटेन मैन, जो कि दशरथ मांझी का अपनी पत्नी से प्रेम की सच्ची दास्तां है, जिसमें उन्होंने मात्र अपने दो हाथों में छेना हथौड़ा लेकर पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया और सड़क बना दी, जो उनकी मोहब्बत की राह में आ खड़ा हुआ था। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदायगी से दशरथ मांझी के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया, और इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। दशरथ मांझी का अपनी पत्नी के लिए प्रेम का सच्चा ये उदाहरण तो है, और उनके लिए हम तो बस यही कहना चाहेंगे, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है।

मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। श्रोतों, देश के लिए मर मिटना जाबाजों की निशानी होती है। उनकी प्रेम कहानी कुछ इस तरह से मुकम्मल हो जाए तो यादगार बन जाती है। साल 2021 में प्रदर्शित हुई फिल्म शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी से ली गई फिल्म थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने देश के लिए कारगिल युद्ध में लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हुए और कैप्टन के शहीद होने के बाद उनकी प्रेमिका डिंपल का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन आज भी वो विक्रम की यादों के साथ जी रही हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। तो विक्रम बत्रा और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के खूबसूरत इश्क की दास्तां है फिल्म शेरशाह। ये फिल्म पर्दे पर कैप्टन बत्रा के किरदार को निभाने वाले एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी कियारा आडवाणी। ये फिल्म भी दर्शकों को बेहद पसंद आई और इस फिल्म के संगीत का तो कहना ही क्या।

लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। श्रोताओं, देश के लिए कुछ यूं भी किया जा सकता है, ऐसे जज्बे के साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल स्टारर राजी फिल्म 2018 में प्रदर्शित हुई और इस फिल्म को मेघना गुलजार ने निर्देशित किया। राजी फिल्म की कहानी एक कश्मीरी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी से विवाह करती है और युद्ध के दौरान भारत को गोपनीय सूचनाएं देकर भारत की मदद करती है। मेघना गुलजार की फिल्म राजी एक भारतीय जासूस सहमत के जीवन पर केंद्रित है। ये फिल्म मुख्य रूप से हरिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर आधारित फिल्म थी। सहमत ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तानी युद्ध रणनीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। हालांकि बाद में उन्हें अपने पति से प्यार हो जाता है, वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। जब सच्चाई का पता चलता है तो उन्हें अपने परिवार को देश को छोड़ना पड़ता है और फिर ये प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाती है। एक भारतीय महिला जासूस की वीरता, साहस, धैर्य का परिचय देती, देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा देती फिल्म है राजी।

चाहिए और जिंदगी को जिंदगी के वास्ते रोज जीना रोज मरना चाहिए। प्यार के खुशनुमा रंग से सजी एक और फिल्म है गुरु। इस फिल्म की कहानी एक युवा गुरुकांत की है जो अपने पिता को खुश करने में नाकामयाब रहता है। यहाँ अपने देश में उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो वो विदेश चला जाता है और अपने देश वापस आने पर बिजनेस शुरू करने का मन बनाता है, लेकिन इस बिजनेस में उसे वित्तीय संकट से दोचार होना पड़ता है। ये रियल स्टोरी भारत के मशहूर बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिला बेन के संघर्ष के दिनों में एक दूसरे का साथ निभाने और हौसला हिम्मत बनाए रखने, सफलता के शिखर पर पहुंचने की ये खूबसूरत दास्तां है। गुरु मूवी में मुख्य भूमिकाएं निभाई ऐश्वर्या रॉय और अभिषेक बच्चन ने। इस फिल्म ने अपार सफलता अर्जित की और कई नए आयाम गढ़े। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना सुन लेते हैं।

0: नमस्कार सभी श्रोताओं के अपने कार्यक्रम में हम बात करनू समाज गांव और महिलाओं की शक्ति और जीवन के भल बढ़ने वाले सकारात्मक विचारों यह कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज एक भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव बठी गुजरना या इसमें खुश रून और सकारात्मक रून मानसिक रूप पर स्वस्थ होने से दगड़ियों आकाशवाणी केवल मनोरंजनक माध्यम नहीं बल्कि समाज के जागरूक करने लगी नई दिशा ले देने से समाज के नई दिशा देने वाले एक सशक्त मंच चले छे। वर्षों बठी की यह मंच ग्रामीण और शहरी महिलाओं प्रतिभा संघर्ष और सफलता कहानियों के जन जन तक पहुंचाते आ रहो। आज एक महिला केवल घर तक सीमित नहीं उस शिक्षा खेती व्यवसाय कला विज्ञान खेल और समाज सेवा जैसे क्षेत्र में अपन पहचान बढ़ूना है। गाँव बनी सहायता समूह बठी आत्मनिर्भर बनी तो शहरूप महिला नए क्षेत्र में नेतृत्व करना है। आकाशवाणी हमेशा महिलाओं का आवाज के सम्मान दे चाहे स्वास्थ्य बठिक जुड़ी हो या शिक्षा महत्व घरेलू उद्योग खेत बाड़ी चाहे पोषण बटी जुड़ी हो हर विषय के आकाशवाणी घर घर तक पहुँचा और सरल भाषा में सब जाने तलक ये अपन बात पूजा। आज जरूरत है महिलाओं के अपन प्रतिभा के पहचानन और अगिल बढ़न और अगिल बढ़ दे अगिल बढ़ दे अगिल बढ़ते जान। आज एक महिला जागरूक है आत्मनिर्भर है आकाशवाणी 90 वर्षों गौरवशाली इतिहास हमको यह संदेश दूँ जब महिलाओं के अवसर मिलूं और मंच मिलूं तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आधारशिला पड़े। तो दगड़ियो यह बातचीत बाद आप लोगों के सुनू इन्हें बात
1: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी
3: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
3: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
4: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
5: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
6: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
5: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
6: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
5: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
6: Thanks.
0: अखिल के हम बात करूँ अल्पसंख्यकों की योजना बारे। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना यह योजना अंतर्गत महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण दी जाए

भारत सरकार एक महत्वपूर्ण योजना से यह विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की और युवाओं की से और यह योजना मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने से यह द्वारा महिला और युवाओं के विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दी जा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सको। इनमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, हस्तशिल्प, फल संरक्षण आदि आदि छन जमें महिलाओं के उद्यमिता यानी रोजगार की शुरुआत करने के बारे में जानकारी दी जाए। यह योजना मुख्य उद्देश्य से महिलाओं घर तक सीमित न रहे अपन हुनर के पहचान दे आर्थिक रूप बल मजबूत बढ़ो। खास बात जैसे यह योजना मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी समुदाय और पारसी समुदाय महिलाओं लिए चलाई देना। ज़्यादा जानकारी लीजिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वेबसाइट पर जाकर आप देख सकता। तो यह बात आप लोगों के लिए जानो संगीत अभियान।

0: into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो डीडब्ल्यू आप लोग ने लीजिए, हम आज एक बातचीत ला रहा बातचीत विषय से आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष विषय पर श्रोता बाणी दगड़ करी गई ये बातचीत, तो सुनो उन दगड़ करी गई ये बातचीत।
7: आकाशवाणी 90 गौरवशाली सालों के विशेष अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत। यह सफर सिर्फ बखतक नहीं बल्कि विश्वास, संस्कृति और जन जनक जुड़ाव शपथ है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी अपन आवाजक माध्यम देश हर कोण कोण तक जानकारी, मनोरंजन और संवेदनाओं का पूजा। आज एक विशेष कार्यक्रम में हम अलग अलग श्रोता दलिन दगड़ बात करूँ और ये विषय पर उनका विचार जाने। सुबह पहली हमर दगड़ जीवनी पुष्पा जी जिन्हें तो हम बात करूँ आकाशवाणी संकेत धुन अखबार में। तब वह पहली हमको बताओ कि आकाशवाणी संकेत धुन किसी और एक महत्व की।
8: आकाशवाणी प्रतिदिन जो शुरुआत है वो एक विशेष धुनल है जैन हम के पत्र लागू कि रेडियो खुल गए यानी कि आकाशवाणी का कार्यक्रम शुरू होने कोई मधुर और मोहक धुन के संकेत धुन गुनी जैसे रक्त उठते ही प्रकृति में सूर्य किरण होनी हमको एक उत्साह जगनी उसी के यो धुन ने हमको ऊर्जा दी।
7: अब वो संगीतक शिक्षिका था, अब हमको बताओ कि यह शुरुआत कब है।
8: यह धुनक जो शुरुआत है वो है 1963 दशक में जब रेडियो प्रसारण भारती अपन शुरुआती दौर में थी। यह धुन सबन है पहली वाल्टर कॉफमैन तैयार करी। वाल्टर कॉफमैन एक संगीतकार थी जो कि मूल रूप कॉफमैन जो थी ऑस्ट्रिया हंगरी की निवासी थी। यह धुन में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखने मिले। यह धुन राग शिवरंजनी पर आधारित थी। वाल्टर कॉफमैन जो थी वो आकाशवाणी में संगीत निर्देशक थे। तकनीकी रूप में कुछ बदलाव भी 1950 में पंडित रविशंकर इन्हें थोड़ी बदलाव करो लेकिन जो ये मूल धुन थी उसको सुरक्षित रखी गया। यह धुन लोगों ने याद दगर जुड़ी छू इसे सुनते ही लोगों के अपन पुराण दुनिया दे गए समाचार है गए गीत पाठ है गए रक्त ब्याह ये रेडियो ने सुनी जा थी इन्हें सुनी जाने है और आज ले ये उत्तम महत्व से रक्त जब यह धुन सुनोगे तत्पर हरिणी

0: अब ये रेडियो शुरू हो गया ले धुन बजाने लग गए। आज डिजिटल दौर में ले ये एक अपन अलग महत्व से जो कि जस सत्ता से जस फैली थी वही आज ले एक अहमियत छू जो हमारे आकाशवाणी पठान छू। यो धुन हमारे सांस्कृतिक विरासत छू एक एक समय देश भरण हमारे सब लग जिम्मेदारी छे की बहुत मेहनत बाद हमारे जो पुराण संगीतकार छन उन्होंने तैयार करी है। ये लीजिए हमन के अपन ये जो सांस्कृतिक हमारे विरासत छू इसे समाओ दे धरण के जैल की हमारे ऊनी वाली पीढ़ी ले ये एक महत्व को समझ सक।
1: आप उन बहुत ही सुंदर जानकारी हमारे दगर साझा करे। आप हम बात कर लो एक और श्रोता बैंड दगर। आज हम आपको जानो 50 साल पहले उस दौर में जब रेडियो मनोरंजन और जानकारी सभ्य कुल माध्यम थी ये विषय पर बात करने लीजिए। आज हमारे दगर छन वरिष्ठ श्रोता प्रेमा जोशी जी।
2: बुद्धि जी मैं कदम है पहले आकाशवाणी परिवार के मंगल शुभकामनाएं जी। 90 गौरवशाली साल हमार यादना सफरा सांस पूरी करी तो मैं सौभाग्यशाली छू जो ये मंच पर मैं आज सुन के बधाई जना लीजिए। अरे बुद्धि जी
1: प्रेमा जी सब है पहले आप हमको ये बताओ कि करीब 50 साल पहले आकाशवाणी स्वरूप का सूची
2: करे रेडियो ही मनोरंजन और लोगन है जूनो एक माध्यम थी। हमारे घर में रखता है बटी लिबेर रात जाने लोग रेडियो दगाई जुड़ी हुई रुचि और कार्यक्रम बहुत ही सादगी भरी ज्ञानवर्धक और दिल सुनने वाली होती चाहे समाचार हो चाहे नाटक हो जी संगीत हो।
1: उबखत को खास कार्यक्रम रेडियो में होती
2: करने बहुत सारे कार्यक्रम थी जैसे हवा महल उन्हें भाई जब मैं रेडियो नाटक उन्हें भाई बिना का गीत माला उन्हें भाई जब मैं फिल्मी गीत जो हम बहुत शौकल सुन सिया डम डम बिगा बिगा मौसम बिगा बिगा या सुनो चंपा सुनो तारा इस टाइप का गीत उन्हें भाई बिना का गीत माला में चित्र लोग छाया गीत बाल बचनाल जी बाल मंडली कार्यक्रम किसान जी ग्रामीण कार्यक्रम और महिला जगत में बहुत सुंदर कार्यक्रम हम महिला नी युवाणी उमेर भाई हर कार्यक्रम अपन अलग होता और अलग अलग वर्ग होची टाइम में
1: अपन अलग बता सब है लोकप्रिय कार्यक्रम के होची
2: महत्व सब है लोकप्रिय कार्यक्रम हवा महल लगी। हवा महल में जो थी छोटी छोटी कहानी सामाजिक मुद्दे हास्य और भावनात्मक प्रसंग सुनाई जाती इन्हें खास बात ये थी कि सिर्फ आवाजन माध्यम पूरे दृश्य श्रोताओं समझ में आ जाती कलाकारों ने आवाज और बैकग्राउंड साउंड इजो प्रभावशाली हुए यश लाखी की उस नाटक में हम खुद एक देश विदेश हमको समाचार मिल जाते आकाशवाणी माध्यम और मुख्य रूप से आकाशवाणी अपन समाचार बुलेटिन होती जो दिल्ली और अन्य केंद्र में प्रसारित हुए भाई ये अलावा उस टाइम में हम लोग ने बीबीसी लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो शिलोंग जैसे प्रसारण के लिए हम उनका आकाशवाणी में सुनना भी मिलती ये समाचार सूची में विश्वसनीयता लीजिए बहुत प्रसिद्ध रुचि उत करे तो समाचार वाचक थी जनर आवाज बहुत दमदार थी उनसे जस जेत की नंदन पांडे जी लोचिया रत्नम सुरेश रमेश चंद्र इनर आवाज इधु प्रभावशाली थी कि लोग सिर्फ इनर आवाज अलग इनको पहचान भक्ति संगीत और शास्त्रीय संगीत उन्हें वह जमे भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगलजा कलाकार थी। कार्यक्रम रत्ता 7 बजे से 8 बजे तक रत्ता जहाँ समाचार उमेर भाई और इस बात से आध्यात्मिक संगीत शुरू है जाने भाई जो अधिकतर आध्यात्मिक और शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने भाई लोग गीत क्षेत्रीय जो कलाकार थे उन लोग ना गीत होने भाई और हर दिन अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम होने भाई राष्ट्रीय कार्यक्रम होने भाई जब मैं शास्त्रीय संगीत होने भाई जब मैं पंडित रविशंकर बिस्मिल्ला खान जज कलाकार होने भाई और जगह हम लोग बहुत मन लगे दे सुनने भाई सुगम संगीत में लता मंगेशकर मोहम्मद रफी किशोर कुमार उस समय सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम होने भाई जगह पूरा परिवार एक साथ बैठ बैठ सुनने भाई और रात 9 बजे बाद थी गजल ठुमरी बेगम अकरजा कलाकार होने भाई जब मैं रात में बहुत ज्यादा गंभीर और भावपूर्ण संगीत प्रसारित होने भाई बिना का गीत पाला मैंने अमीन सयानी जी आवाज को मैं आईले नहीं भूल रही हूँ बहुत सुंदर आवाज थी अपन समय हिसाबल पहुंचा बहुत सुंदर दौर थी।
1: दीदी आप बहुत है भली के हम कहे आकाशवाणी कार्यक्रमों बारे में जानकारी दे पहले और आज वक्त में आप कहे रेडियो में सबसे ठूल अंतर के लागू
2: ठूल अंतर मुख्य यही लागे न पहले लोग धैर्य पूर्वक उमेर भाई और अपन कार्यक्रम में इंतजार करने भाई और आज बहुत

0: कल्प गई, लेकिन उस समय में रेडियो ही मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी एकमात्र माध्यम थी। ईएलजी महत्व बहुत ज्यादा थी और लोगों ने रेडियो देखा बहुत ज्यादा जुड़ाव और गहरा संबंध। अजीन कले यो सफर यो कारवां आकाशवाणी चलते रहो, आकाशवाणी निधि ने ढेर सारी शुभकामनाएं सन।
1: ये क्रम में आज हमारे दगा छन भगवती जी जनून आकाशवाणी कई लोग प्रिय कार्यक्रम सुना को अपू भगत में रेडियो सुनक अनुभव कह सूची।
2: हमारे समय में अर्थात सन 1964 में एकमात्र मनोरंजन साधन केवल रेडियो ही हुची। गाँव में अपन पटांगण में रेडियो को धर बेस बाकी सब लोग अपन काम काज में लग रही और रेडियो सारे प्रोग्रामों को सुनते रहोची। हम नन गीतों में ज्यादा ध्यान दी थी, परंतु जो सयान लोग थी वो कृषि कार्यक्रम व समाचार यो सब चीजों में ध्यान दी थी। कई बार तो प्रोग्राम में सुनते रहने वे और पकौड़ी पुआ पटांगण में भे भे सब तगड़े खाने वे ऑल इंडिया रेडियो जो प्रोग्राम अनुभव उन्होंने आनंद लेते रहते। सन 1971-72 में फिर कार्यक्रमों बारे में थोड़ा विस्तार जानकारी होने फैटी तो धीरे धीरे हम ध्यान धरेगी कि कब अखत कर कोवल प्रोग्राम होनी और जैसे जैसे प्रोग्राम होगी वही हिसाब हम अपन कार्यक्रम अपन टेमो निर्धारण करती।
1: तो दीदी वो वक्त आकाशवाणी में जिसको कार्यक्रम होती जो ज्यादा सुनी जाती।
2: हमारे समय में बहुत प्रोग्राम होती जैसे विविध भारती, जयमाला जोशी, फौजी भाइयों जी थी और छाया गीत में फिल्मी गीत होती और सहेली सखी में महिला कार्यक्रम होती, युवा वाणी में युवकों लीजिए होती और प्रातः समय में रहती कर भक्ति संगीत होती और फरमाइशी गीत होती। एक कार्यक्रम में गिरी गुंजन थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, सब लोगों को सुनना चाहती और ब्याल कबीर सब इकट्ठा थी।
1: अल्लाह अपुन गिरी गुंजन कार्यक्रम में जिक्र करो, हम को ये बार में थोड़ा विस्तार बताओ कि यह कस कार्यक्रम होती।
2: यह हफ्ते में एक दिन होती, शुक्रवार दिन 6 बजे से 7 बजे चला। तो हम यह प्रोग्राम पूरे हफ्ते भर इंतजार करती और यह में पहाड़ गीत, गढ़वाल गीत और जौन सारी गीत होती। यह सुनना लीजिए, हम बहुत उत्साहित रहती। यह गीतों को सुनना लीजिए, हम पूरे हफ्ते भर इंतजार करती। उनको सुन में लगती की हम अपन गाँव में पहाड़ में नगू, अपन गाँव संस्कृति और उदगा हम मिल गो, हम अपन नंजना कल दगाल में बताओ जी अपन पहाड़ संस्कृति और यो तीज त्योहार इनार बार में जानो सीखो और भविष्य में उनको अपनाओ। यह कबीर हमको बहुत ही गुरु थी। जैसे कुमाऊनी में थी अलगे भी खोती मेरी दुर्गा है रह गए, दुर्गा चाने चाने मेरे कमरे पट गए। जैसे थी गया मेरा घर सुरंगी ला घर वाली रंगीली, मेरा डब जो परिवार मेरा मन सुरंगी लो।
1: बहुत बड़ी। और एक जौन सारी गीत ले ऊँची आपको याद से?
2: जौन सारी गीत में ना कमला बैठी गाती हुए बहुत बढ़िया लगे थी। 80 दशक में जब टीवी मोबाइल लैपटॉप के लेनी थी, जब यह गीतों को सुन चिया और यह प्रोग्रामों को सुन चिया तो हमको बहुत बढ़िया लगे थी। और आज समय में भले ही बहुत कुछ है वो, परंतु वो बात है
1: वो वक्त रेडियो कार्यक्रम और आज कार्यक्रमों में आपको क्या अंतर नजर हूँ।
2: 1953 में जन्म छू, 1963 बड़ी को मैं सुन रहा हूँ, मैं आज में रेडियो सुन रहा हूँ तो मैं कह लागू कि उभर कर का जो भावनात्मक वो थी, प्रेरणा थी और जो रसीलापन थी वो धीरे धीरे कम हो गो की। लेकिन इंस्ट्रूमेंट वगैरह अब ज्यादा तकनीकी व्यवस्था बढ़ गए, रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं यादों और सांस्कृतिक एक हिस्सा जो गिरी गुंजन जस लोकप्रिय कार्यक्रमों को लोक परंपराओं और संगीत का घर घर तक पूजा।
1: अपूर्ण बिल्कुल सही को, रेडियो केवल एक माध्यम ने बल्कि हमारी परंपराओं संस्कृति और भावनाओं एक अभिन्न हिस्सा है। आकाशवाणी पीढ़ियों के जोड़ो गोमठी लिवे शहर तक लोगों की आवाज उनर भावनाएं और उनर संस्कृति के एक धाक में गछुना काम करो। आज यह बातचीत में अब सबु बैन्यूल अपन अनुभव यादों और विचारों के माध्यम आकाशवाणी गौरवशाली सफर के बहुत सुंदर तरीके हमारे सामने धरो। आकाशवाणी 90 वर्षों यह यात्रा केवल प्रसारण यात्रा नहीं बल्कि विश्वास संस्कृति संगीत साहित्य और जनभावनाओं यात्रा। बदलते वक्त में तकनीक भले ही बदल गयो लेकिन रेडियो बठी जुड़ी आत्मीयता आज ले लोगों के दिलों में उसके जीवित छे। मैं आप सब का आभार व्यक्त करूं, अपन बहुमूल्य वक्त दिवे इतु भल जानकारी हम दगर साझा करें।

तो दगड़ियों, ये कार्यक्रम प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत और यह का दगड़ हमका आज ऐपण इतिला संपन्न करना मध्यो फिर भेंट हुई। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम अर्पण। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं। कुछ पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरो अनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपए नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और पद्धतियों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून में सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण

0: बैठक में सदस्यों ने बिजली, शिक्षा, जलापूर्ति और सिंचाई सहित विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा मार्गों से लेकर धामों तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, जिसमें धामों में श्रद्धालु सुरक्षित और सहज रूप से दर्शन कर रहे हैं। यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर अपने घर सकुशल लौट चुके हैं। इस बीच चारधाम यात्रा और प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
1: मौसम की कहीं पर ही कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं परिवर्तित करना होगा, सरकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री में श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न।
0: असम दौरे के बाद उत्तराखंड लौटे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और पद्धतियों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
2: मैं 5 दिन के दौरे पर आसाम और नागालैंड गया था। वहाँ पर हमने जो क्षेत्र में काम करने वाले उनसे बातचीत हुई, कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण हमने किया और हमें बताया गया कि हमारी जो उत्तराखंड की चाय है जो आज ऑक्शन में जा रही है, कलकत्ता में जाती है, आज उसको मार्केटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी चाय दार्जिलिंग से जो यहाँ देश के अंदर सबसे बेहतर चाय दार्जिलिंग की है और मुझे वहाँ विशेषज्ञों ने बताया कि हमारी चाय उससे बेहतर है। उसके लिए हमने एक मार्केटिंग प्रोड्यूस करने वाली पार्टी से हमने बातचीत की है और शीघ्र ही हमारा जो चाय का ब्रांड है पूरे विश्व दिखाई देगा।
0: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हरिद्वार में अगले साल आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दृष्टिगत गंगा की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में कहा कि कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मल कीचड़ उपचार संयंत्र, नदी की सतह व घाटों की सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोगवाहक नियंत्रण से संबंधित कार्य शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर कुंभ 2027 की तैयारियों और नमामि गंगे परियोजनाओं पर चर्चा की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुके कैदियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी रिहा नहीं करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका सहित कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश रविन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इन कैदियों को रिहा करने के लिए बनाई गई नीति को 1 सप्ताह के भीतर न्यायालय को अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर में महिलाओं के रहने की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में रह रही पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। अध्यक्ष ने कॉल रिकॉर्ड, काउंसलिंग विवरण और विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए लंबित मामलों की समीक्षा भी की। उन्होंने सेंटर प्रशासक और काउंसलर्स को निर्देश दिए कि पीड़ित

0: महिलाओं के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा प्रत्येक महिला को विधिक सहायता की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर केवल एक आश्रय स्थल नहीं बल्कि संकट की घड़ी में महिलाओं के लिए भरोसे और न्याय का केंद्र है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य की अध्यक्षता में रुद्रपुर में जिला पंचायत की सामान्य बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा, जलापूर्ति, सिंचाई, चिकित्सा आदि विषयों पर अपनी समस्याओं से सदन को अवगत कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
1: अभी हम इस तीसरी बोर्ड बैठक हमारी हुई है और हम सभी प्राथमिकताएं हमारे जो जिला पंचायत जो सदस्य हैं हमने उनसे कहा है कि जो वहाँ के अपने क्षेत्रों की जो प्राथमिकताएं हों, आपकी चाहे रोड की हो, चाहे नाली की हो, चाहे जल संबंधित जो भी कोई समस्याएं हों, उसको आप प्राथमिकता पे यहाँ रखेंगे, उस बोर्ड बैठक में हम पास कर उसको धरातल पर ले जाने का काम करेंगे।
0: मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने कहा कि बैठक में जो भी जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्याएं रखी हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
2: यहाँ पे समस्त जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट से उपस्थित थे और उनके जितने भी हमारे सदस्यों का एक एक करके लाइन डिपार्टमेंट से वार्ता की गई, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, जल संस्था हो, जो भी ऐसे इश्यूज रखे गए थे शिक्षा के हो, तो सभी इश्यूज को हमने टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्व करने के लिए कहा गया है। हमने कहा है कि कहीं भी कोई स्पेसिफिक अगर कहीं कोई इंस्टेंस आता है, जैसे कि शिक्षा में एक इशू आया था कि वहाँ पे प्राइवेट बुक सब्सक्राइब की जा रही है, हमने कहा कि कोई भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दे त्वरित उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि आरटीई के अगेंस्ट है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगणों द्वारा जो जो इश्यूज दिए गए थे और जो बजट की स्थिरता के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं, उन समस्त प्रस्तावों को हमारे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हमारे जो सदस्यगण हैं उनको भी इसमें अवगत करा दिया जाएगा।
0: बागेश्वर में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर औषधि विभाग ने गरुड़ और बैजनाथ क्षेत्र में कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो मेडिकल स्टोरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। दवाओं के क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए तथा दवाओं का भंडारण निर्धारित तापमान पर नहीं पाया गया। दोनों मेडिकल स्टोरों पर तत्काल प्रभाव से दवाओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। वहीं एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति भी भेजी गई है। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने कहा कि दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
3: जन स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं और गरुड़ में भी निरीक्षण किए गए और उसमें जो दो मेडिकल स्टोर थे जहां पर कुछ अनियमितताएं मिली जिसके क्रम में उनका औषधि क्रय विक्रय जो है तत्काल रूप से बंद कर दिया गया। हमारे द्वारा जो है वो जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी जितने भी औषधि वितरण इकाइयां हैं वहां पर नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी मना प्रभावी औषधियां हैं, जो एमटीपी किट्स हैं या जो कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप हैं, उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी वैद्य डॉक्टर के पर्चे पर ही उनका वितरण किया जाए। इसके लिए जो हमें विभिन्न जो है रिकॉर्ड जो है उनके द्वारा मेडिकल स्वामी द्वारा हमने बनवाए हैं उनको हम इंश्योर भी कर रहे हैं निरीक्षण के समय, उनका सत्यापन किया जा रहा है नियमित रूप से।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और पद्धतियों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून में सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उधम सिंह नगर जिला पंचायत की सामान्य बैठक में सदस्यों ने बिजली, शिक्षा, जलापूर्ति और सिंचाई सहित विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: और लीजिए, अब सुनिए भूपिंदर सिंह की आवाज में कैफी आजमी का नगमा।

और अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं सईद राही की गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम

0: थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आँखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आओ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी

0: कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
2: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
0: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
0: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
0: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठा कर रखो।
0: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
0: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन

0: घर में बिताओ। गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
2: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
5: इन्हें हमारा सलाम।
3: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
6: साथियों नमस्कार।
3: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
3: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
3: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
6: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
3: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
3: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
6: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई।

0: आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। एल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। एल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो एल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर

0: गोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े, अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे,
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1282 अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गंभीर दार्मिज के गाए कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं, उत्तराखंड के लोकगीत। और अब समापन कर रहे हैं एक कुमाऊनी लोकगीत के साथ, कलाकार हैं गोविंद सिंह रावल।

उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की

0: रिजाज के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों

0: कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग लक्षण और उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर KK मिश्रा।

पशुपालक भाइयों, खुरपका मुंहपका बीमारी एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह एक विषाणु एप्थोवायरस से होता है। इस विषाणु के 7 तरह के सीरोटाइप पाए जाते हैं, जो कि ओ ए सी सेट 1, सेट 2, सेट 3 व एशिया 1 हैं। भारत में इस विषाणु के 4 सीरोटाइप पाए जाते हैं, जो कि ओ ए सी व एशिया 1 हैं। यह बीमारी दो खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी

सुअर में तथा जंगली पशुओं में जंगली भैंस, भारतीय हाथियों व हिरणों की प्रजातियों को प्रभावित करती हैं। खुरपका मुंहपका बीमारी विश्व के समस्त देशों के पशुओं में पाई जाती है, परंतु बहुत देशों ने वृहद टीकाकरण व अन्य उपायों के माध्यम से खुरपका मुंहपका रोग से अपने पशुओं को मुक्त करा लिया है। जैसे उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप ने वृहद टीकाकरण के माध्यम से अपने पशुओं को इस रोग से मुक्त करा लिया है। यह बीमारी मध्य पूर्व देशों, अफ्रीका, एशिया तथा दक्षिण अमेरिका में होती रहती है। हमारे देश में खुरपका मुंहपका विषाणु के 4 सीरोटाइप पाए जाते हैं, ओ, ए, सी व एशिया 1 हैं। इस बीमारी के कारण पशुपालकों को आर्थिक रूप से बहुत हानि होती है। खुरपका मुंहपका बीमारी एक विषाणु रोगग्रस्त पशु से सीधे संपर्क के माध्यम से, लार से, उत्सर्जन से तथा हवा के बहाव की दिशा में फैलता है। यह विषाणु मनुष्यों, कुत्ते, बिल्ली व पक्षियों द्वारा भी फैला दिया जाता है। इसी कारण रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए और रोगग्रसित पशुओं के मल मूत्र व उनके खाने के बर्तन, जिसमें पानी पिलाते हैं, पीने का बर्तन, इन सबको भी अलग रखना चाहिए व साफ सुथरा रखना चाहिए। खुरपका मुंहपका रोग का विषाणु ग्रसनी के म्यूकोसा को संक्रमित करता है तथा यहीं पर अपनी संख्या को बढ़ाता है। यह विषाणु पशुओं की खाल तथा पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह विषाणु बाहरी वातावरण में निष्क्रिय रहता है और जैसे ही यह पशुओं के संपर्क में आता है तो सक्रिय हो जाता है और शरीर के अंदर तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। खुरपका मुंहपका बीमारी के विषाणु रोग के लक्षण आने से पहले ही दूध में आने लगते हैं, जिससे गौशाला में दूध निकालने वाले व्यक्ति के माध्यम से यह बीमारी एक पशु से दूसरे स्वस्थ पशुओं को फैल जाती है। दूध पीने वाले बछड़े बच्चियों को रोग के लक्षण आने लगते हैं। खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि नाम से विदित है, खुरपका और मुंहपका। इस रोग में पशु का बुखार 104 फारेनहाइट तक हो जाता है। मुंह के अंदर मसूड़ों पर, कोमल पैलेट पर, जीभ पर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, जो कि फूटकर बड़े घाव बना देते हैं। दुधारू पशुओं के थनों पर घाव व छाले हो जाते हैं। मुंह के घाव होने के कारण पशु के मुंह से अधिक मात्रा में लार व झाग निकलता रहता है। रोगग्रसित पशुओं के खुरों के बीच की खाल पर घाव व छाले पड़ जाते हैं। खुर व खाल के संपर्क वाले स्थान, जिसको कि हम कोरोनरी बैंड कहते हैं, उस पर घाव हो जाते हैं, जिस कारण पशुओं को चलने में परेशानी होती है। पशु लंगड़ाकर चलता है। सही समय पर उपचार न मिलने के कारण पशु का खुर पैर से अलग होकर गिर जाता है। दुधारू पशु में यह रोग होने पर दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। कभी कभी पशु दूध देना भी बंद कर देता है। खुरपका मुंहपका बीमारी के मुंह में छाले हो जाने से अधिक मात्रा में लार, पशुओं को लंगड़ाकर चलना, अचानक दूध उत्पादन गिर जाना, इस बीमारी से नवजात दूध पीने वाले बछड़ों, बछिया या मेमनों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए खुरपका मुंहपका बीमारी पशुपालकों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। सुअरों में यह बुखार 107 फारेनहाइट तक हो जाता है। ग्रसित सुअर अत्यधिक लंगड़ाकर चलता है और वह बहुत सुस्त हो जाता है। खुरपका मुंहपका बीमारी का उपचार उसके लक्षण के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज

पाता है। पशुओं में मुंह के छालों को पोटास, जिसे हम साधारण भाषा में लाल दवा के नाम से जानते हैं, के घोल से दिन में 3 से 4 बार धुलाई करें। फिटकरी के घोल से 3 से 4 बार मुंह की धुलाई करें। मुंह के छालों पर ग्लिसरीन नामक दवाई लगाएं तो घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। पैरों के घावों में अच्छी तरह से लाल दवाई के पानी से साफ करें, गोबर व मिट्टी हटाएं। घाव वाली जगह पर कोई सी एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक क्रीम को अच्छी तरह से लगाकर पट्टी बांध दें, जिससे कि दोबारा घाव में गोबर या मिट्टी ना घुसे। पशुपालक भाइयों, अपनी गौशाला की फर्श की धुलाई करें, गंदगी को साफ सफाई रखें। गौशाला में फिनाइल के घोल का छिड़काव अवश्य करें, जिससे मक्खियाँ नहीं आएंगी, नहीं तो यह मक्खियाँ खुले घावों पर बैठकर अंडे दे देती हैं और फिर घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी गौशाला की जितनी साफ सफाई रखेंगे, इस बीमारी से उतनी जल्दी आप निजात पा लेंगे। इस बीमारी के लक्षण आते ही आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से अवश्य संपर्क करें तथा समय पर उपचार कराएं। खुरपका मुंहपका बीमारी के बचाव का मात्र टीकाकरण ही है। पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को खुरपका मुंहपका बीमारी का टीकाकरण अवश्य करवाएं। यह टीकाकरण साल में 2 बार लगाना चाहिए, क्योंकि यह टीका 4 से 6 महीने तक आपके पशुओं को इस बीमारी से बचाएगा। पशुपालक भाइयों, आजकल पूरे भारत में FMDCP प्रोग्राम, यानी कि खुरपका मुंहपका बीमारी के रोकथाम का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पशुपालन विभाग के द्वारा संबंधित पशु चिकित्सालय क्षेत्र के अंतर्गत सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाना अनिवार्य है। अतः पशुपालक भाइयों, आपसे निवेदन है कि आपके गांव में टीकाकरण हेतु टीमों को सहयोग करते हुए अपने पशुओं का खुरपका मुंहपका टीकाकरण अवश्य करवाएं।

0: पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग लक्षण और उपचार। इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर के मिश्रा से जानकारी अभी श्रोता सुन रहे थे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:40 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा रमेश चंद्र मिश्रा का गाया कुमाऊनी लोकगीत। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा हुनर को बनाएं रोजगार। इसी कार्यक्रम में वार्ता सुनिएगा यातायात नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी और वार्ताकार होंगी बरखा कनवाल। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम सुना जा सकेगा, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा

अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत श्रोता सुनते हैं, जिसमें आज आप कुछ भजनों का आनंद लेंगे। कलाकार होंगे शर्मा बंधु और सुरेश वाटकर, अनुराधा पोटवाल। संध्या 7 किसान वाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे, जिसमें आज की बातें होंगी उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे, इस विषय पर चर्चा सुनिएगा। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग विषय पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:40 पर और 9:15 पर इंद्रधनुष में। सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस हम लेकर आएंगे 8:00। श्रोता गजलों का फरमाइशी प्रोग्राम महफिल सुन सकते हैं 9:30 पर। गीत विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दिन के 2:45 हुए हैं और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। और आज फनकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अंतरा माली। श्रोताओं, 11 मई 1979 को मुंबई में अंतरा माली का जन्म हुआ। उनके पिता जगदीश माली फेमस फोटोग्राफर थे। अंतरा माली बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं। और 2000 के दशक की बात करें तो उस दौर में उनकी कई चर्चित फिल्में प्रदर्शित हुईं।

श्रोताओं, 2001 से लेकर 2010 के बीच अंतरा माली कई फिल्मों में नजर आईं। ढूंढते रह जाओगे उनकी डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा जाने माने निर्देशक की कई फिल्मों में काम किया, और जिनमें उनकी कुछ फिल्में हैं प्रेमा कथा, मस्त, रोड, नाच, गायब, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कंपनी, डरना मना है जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय कर अपनी खास जगह बनाई दर्शकों के दिलों में।

0: चुटकी बोलती है। ए चूड़ी वाले चाचा, अपनी चुटकी माधुरी लगती है कि नहीं?
1: बेचता हूँ चूड़ियाँ, चूड़ियों की कसम, अरे तू है कहाँ माधुरी से कम।

0: 2 3 4 5 6 7 8
1: तू बन जाएगी माधुरी। तेरा खास नाम भी एक कशिश है,
2: कुआनों की नींदों पे बंदिश है।

0: अरे पंडित जी, जरा इसका हाथ तो देखना।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: आप तो बड़ा निराला है, फिल्मों में तेरा बोल वाला है, झूठ बोलो तो तोता उड़ जाए, अभी अभी शीघ्र ही तेरा समय आने वाला है।
3: अरे दक्षिणा तो देती जा।
0: ये लो ठेंगा।
4: अरे ओ चुटकी,
5: क्या है?
4: गजब की नाचती हो, गजब की गाती हो तुम।
5: मैं?
6: हाँ तुम।
4: उजड़े हुए चेहरों को पल में खिलाती हो तुम।
5: मैं?
6: हाँ तुम।

0: बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो?
1: जरूर होगा कुछ काम।
2: मेरी मुनिया की शादी है इतवार की शाम। तुमको नाचना होगा, तुमको गाना ही होगा, माधुरी की तरह दिल बहलाना ही होगा।
1: अरे मेरी माधुरी फिल्मों में नाचती गाती है, ऐसे वैसे शादियों में नहीं।
3: पैसे देंगे तो वो भी मान जाएगी।
2: तू क्यों इतना इतरा रही है?
4: सही तो कह रहा है
1: राजा, तुम भी।
4: अरे तुम जब चाहो हमको नचा सकती हो, और खुद के ये तेवर।
1: तेवर क्यों नहीं होंगे, ये हमारे गजरौला की माधुरी है।
5: हाँ तो। तेरी क्या औकात है?
6: मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ इस फिल्म से गाना था, और ये फिल्म जब आई थी तो अंतरा माली ने अपनी एक अलग पहचान इस फिल्म के जरिए बनाई थी। साल 2005 की बात करें तो इस साल उनकी एक फिल्म आई मिस्टर या मिस, और इस फिल्म को अंतरा माली ने खुद ही लिखा था और खुद ही निर्देशित भी किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिर एक लंबे अंतराल के बाद साल 2010 में अंतरा माली ने अमोल पालेकर की एक फिल्म से फिर वापसी की, और इस फिल्म का नाम था एंड वंस अगेन। इस फिल्म में अंतरा माली ने एक भिक्षुणी की भूमिका निभाई थी, और इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपना सर तक मुंडवा लिया था। अपने इस नए लुक से उन्होंने अपने चाहने वालों को भी हैरान कर दिया था, और इस फिल्म में अंतरा माली के अलावा रजत कपूर और ऋतुपर्णा सेन गुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में शामिल थे। साल 2009 में अंतरा ने चे कुरियन से विवाह किया, जो कि एक मैगजीन के एडिटर हैं, और उसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहा। उन्होंने कुछ तमिल और मलयालम फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई।

एक ही फनकार अभी आप सुन रहे थे और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज फनकार थी अंतरा माली, मशहूर अभिनेत्री। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3 और इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अंजुबांग देकर स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, गीत नगमे गजल नज्म या गीत संगीत से भरे कोई भी तराने हो जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं और जिंदगी के हर लम्हों में हमारे सुख दुख के सच्चे साथी की तरह हमारा साथ निभाते हैं। यूं तो नगमे गीत तरह तरह के बने हैं, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरत वाद

नदियों की तरफ चलें तो नदियाँ, पहाड़, जंगल, पर्वत, ये सभी हमें नज़र आते हैं खूबसूरत वादियों का ज़िक्र जब होता है एक खूबसूरत गाने में। तो कुछ ऐसे ही तराने चुने हैं हमने आज सदाबहार फिल्मी गीत में। आगाज़ कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए आज और कल फिल्म के नगमे से। बोल साहिर के हैं और तर्ज बनाई है रवि ने।

नीले गगन की तले धरती का प्यार पले, नीला गगन और खूबसूरत वादियाँ जैसे ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, और इन खूबसूरत वादियों में अगर गुनगुनाने का अवसर मिले तो हमराज फिल्म का ये गाना हम सभी अक्सर कहीं ना कहीं ज़रूर गुनगुनाते हैं। बहरहाल इस समय आप भी गुनगुना सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में इस गाने के साथ। फिल्म हमराज महेंद्र कपूर का गायन है, साहिर ने इसके शब्द लिखे हैं और धुन तैयार की है रवि ने। आइए सुनते हैं।

नीले गगन के बाद चलिए नीले पर्वतों की धाराओं की ओर, चलें एक खूबसूरत गाने के साथ। फिल्म है आदमी और इंसान, आशा भोसले महेंद्र कपूर के युगल स्वर हैं, संगीत दिया है रवि ने और साहिर लुधियानवी के शब्द हैं।

चलिए अब कुछ शाम की तरफ रुख करें। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। कितने खूबसूरत अल्फाजों से बुना गया है ये प्यारा सा तराना, और ये खूबसूरत बोल ही एक प्यारा सा समा बांध देने की खूबसूरती बयां करते हैं। तो ऐसा ही प्यारा गाना आइए अब मिलकर सुनते हैं और महसूस करते हैं शाम की खूबसूरती को। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों के संग साहिल लुधियानवी साहब ने इसे लिखा है और खयाम का मधुर संगीत है।

शाम की अलग ही रंग बिखेरती है प्रकृति, ऐसे में इश्क की दास्तां कुछ यूं भी बयां होती है जैसे इस गीत में। फिल्म है कानून और मुजरिम, स्वर दिया है उषा मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

सदाबहार फिल्म गीतों का आनंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से। श्रोताओं, गुलजार साहब शाम को अपने शब्द दें तो वो शाम यकीनन सुरमई और कुछ ज़्यादा ही जज्बातों की चाशनी में लिपटी होगी। ऐसे ही शाम का जिक्र एक खूबसूरत नगमे के साथ, गुलजार साहब के बोलों के साथ, लेकिन फिल्म से है। हृदयनाथ मंगेशकर जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। सुरेश वाडकर की मखमली आवाज़ एक बार फिर से।

श्रोता अभी सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं, अब आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। ये सभी प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ साथ 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर FM बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2040

0: 27 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार के सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। ये सभी प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ साथ 101.5 MHz पर FM बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीत का कार्यक्रम शैल स्वर। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं रमेश चंद्र मिश्रा।

शैलस्वर कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने रमेश चंद्र मिश्रा का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत सुना। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सायंग 6:50 पर और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी देहरादून से रिले किए जाएंगे। सायंग 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा हुनर को बनाए रोजगार। साथ ही इस कार्यक्रम में युवा साथी बरखा कनवाल की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय रहेगा यातायात नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी। इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे व्यक्ति विशेष और आज का इतिहास। सायं 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और भक्ति संगीत में शर्मा बंधु और सुरेश वाडेकर के साथ अनुराधा पौंडवाल की गायी भक्ति रचनाएं सुनिएगा सायं 6:41 पर। शाम 7:00 किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें का विषय रहेगा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कब और कैसे। साथ ही इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग विषय पर चर्चा। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे सायं 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर। सबरस कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर और अपनी फरमाइश की चंद गजलें आप सुनेंगे महफिल कार्यक्रम में आज रात 9:30 पर। ये थे सभा के शेष कार्यक्रम। नजर डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर।

प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। प्रातः 5:55 पर, प्रातः 6:05 पर विचार बिंदु, 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज की बात प्रातः 6:40 पर होगी। प्रातः 6:45 पर देशगान होगा। विविधा कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। प्रातः 6:50 पर, प्रातः 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ। प्रादेशिक समाचार प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी देहरादून से रिले किए जाएंगे। दीवान कनवाल के गाये कुमाऊनी लोकगीत सुने जा सकते हैं लोक मंजरी में प्रातः 7:30 पर। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 8:30 पर। और अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुनिएगा गीत निर्झर में प्रातः 9:05 पर। सबरंग कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 10:05। कलाकार होंगे जसवंत सिंह, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह और आशा भोसले। प्रातः 11:00 फौजी भाई सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। लोक सुर हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 11:30 पर। दोपहर 12:30 पर घर संसार में कल की चर्चा का विषय रहेगा समझे सही पेरेंटिंग। और साथ ही इस कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी रसोई से। इस कार्यक्रम में ही श्रीमती दीपा साह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा सरलता और सहजता सुखी जीवन का मंत्र। दोपहर 12:00 मेरी पसंद के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1283वीं कड़ी हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:30 पर। और दोपहर 2:00 आप सुनेंगे उत्तराखंड के लोकगीत। खेती की बातें कार्यक्रम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे श्री हरीश चंद्र जोशी। और एक ही फनकार दोपहर 2

कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सायं 6:50 पर और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सायं 7:30 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शैलस्वर कार्यक्रम में कल सायं 5:05 पर आप सुनेंगे नंदलाल आर्य का गाया कुमाऊनी लोकगीत। युवाणी कार्यक्रम में सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे नशे के खिलाफ जागरूक बने विषय पर आज की बात। साथ ही युवा साथी सुनेंगे साइंस का संसार। उत्तरायण कार्यक्रम में सायं 5:45 पर सुनिएगा वन आधारित आजीविका को बढ़ावा विषय पर चर्चा। साथ ही इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप कौशल उन्नयन योजना से वैश्विक रोजगार विषय पर वार्ता। भक्ति संगीत कार्यक्रम में सुरेश वाडेकर और श्री रूप की गायी भक्ति रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे सायं 6:41 पर। और ग्राम जगत कार्यक्रम में जैविक खाद का महत्व विषय पर आज की बातें होंगी कल सायं 7:00। लोक गाथा नल दमयंती का 8वां भाग हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 8:00। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00 और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे सायं 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष के तहत। श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घर पर खाली बैठते हैं या अपनी पुरानी यादों को खंगालते हैं तो हमें अपनी कोई ऐसी खूबी याद आती है जिसे हम हॉबी कहते थे। किसी को सिलाई का शौक था, किसी को लकड़ी पर नक्काशी का, तो किसी को घर के आंगन में उगी जड़ी बूटियों की पहचान थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम सिर्फ शौक समझकर छोड़ देते हैं वही हमारी तरक्की का रास्ता खोलने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुनर को बनाए रोजगार की। देखिए, आज के दौर में सिर्फ डिग्री होना ज़रूरी नहीं है बल्कि हुनर होना ज़रूरी है जिसे हम अपना रोज़गार बना सकते हैं। जैसे अगर किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है या खाना बनाने का वो बहुत शौकीन है तो वो होम स्टे या टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकता है। किसी को बोलने की कला आती है तो वो डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि इतने छोटे काम से क्या होगा, पर यकीन मानिए दोस्तों, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारा हुनर उसे महान बनाता है। तो आज ही अपनी उस दबी हुई कला को बाहर निकालिए और उसे अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि मेहनत अगर हुनर के साथ मिल जाए तो कामयाबी शोर मचा देती है। तो दोस्तों, आप सब भी देखिए कि आपके अंदर क्या हुनर छिपा है। चलिए कार्यक्रम में अब सुनाते हैं आपको ये गीत

0: बारे में क्या परफॉर्मेंस का बोलो मार्केट ट्रेंड सुनने में आएगी
1: आज की खबर में
2: पहले ही बोला था ब्रो
0: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
0: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
7: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
6: हा?
7: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
6: सॉरी
7: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
6: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
7: मतलब
6: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
9: चले दोस्तों कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंक व्यक्ति विशेष की ओर और आज हम बात करेंगे द लेडी विद द लैम्प यानी फ्लोरेंस नाइटिंगल के बारे में दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म 12 मई 1820 को एक अत्यंत समृद्ध और सुशिक्षित परिवार में हुआ था उस समय नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था लेकिन फ्लोरेंस का मानना था कि ईश्वर ने उन्हें मानवता की सेवा के लिए चुना है अपने परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने सेवा का मार्ग चुना और नर्सिंग की विधिवत ट्रेनिंग ली फ्लोरेंस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1854 का क्रीमिया युद्ध था जब उन्हें पता चला कि युद्ध के मैदान में सैनिक चोट से ज़्यादा गंदगी और संक्रमण से मर रहे हैं तो वे 38 नर्सों के दल के साथ वहां पहुंची और वेंटिलेशन व पोषण पर जोर दिया वे रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर एक मरीज की सुध लेने निकलती थी इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से अमर कर दिया फ्लोरेंस ने ही लंदन में दुनिया का पहला प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल खोला आज दुनिया भर में नर्स जो नाइटिंगल शपथ लेती हैं वो उन्हीं के आदर्शों की देन है तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगल का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा परमो धर्मः उनका व्यक्तित्व आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो समाज की पुरानी सोच को बदला जा सकता है आज उनके जन्मदिन जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं पर हम उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नमन करते हैं जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में जुटे हैं तो दोस्तों अभी हमने जाना फ्लोरेंस नाइटिंगल के बारे में चलिए कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनाते हैं आपको ये वार्ता वार्ता का विषय है यातायात नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी और वार्ताकार हैं परखा कनवाल
10: आज के इस आधुनिक युग में गति ही जीवन का पर्याय बन गई है पहिए ने इंसान की प्रगति को रफ्तार दी है लेकिन इसी रफ्तार ने सड़कों को असुरक्षित भी बना दिया है सुबह घर से निकलते समय हम अपनी मंजिल तय करते हैं लेकिन क्या हम सुरक्षित पहुंचने की गारंटी देते हैं भारत में हर साल 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं यह केवल आंकड़े नहीं है बल्कि यह वे परिवार हैं जिन्होंने अपना सहारा खो दिया यातायात के नियम सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के बीच एक मौन समझौता है ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। दोस्तों सड़क सुरक्षा के मामले में बाकी देशों के मुकाबले भारत देश की स्थिति सही नहीं है यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं जिसमें उनकी जान भी चली जाती है बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह लोगों में जागरूकता की कमी है सरकार ने यातायात के नियम तो कड़े बनाए हैं लेकिन उन नियमों का पालन कैसे करना है सड़क पर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जाती है, यही कि वह हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, फोन पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी तेज ना चलाएं, नशे में वाहन से हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया करने की गति धीमी हो जाती है, नशे में वाहन चलाना खुदकुशी के साथ साथ हत्या का प्रयास भी है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय एक सेकंड के लिए फोन देखना आपको कई मिनट तक अंधा कर सकता है, सामने से आ रहे वाहन को चोट पहुंचा सकता है, आपकी व दूसरों की जिंदगी को खत्म कर सकता है। ओवर स्पीडिंग और स्टंग आजकल युवाओं में फैशन बनता जा रहा है, युवा अक्सर वीडियो बनाने के लिए चलती सड़क को मैदान बनाता है, वो हाईवे या व्यस्त सड़कों पर स्टंग करते हैं जो न केवल उनकी बल्कि राहगीरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। दोस्तों के दबाव में आकर युवा स्टंग या तेज गाड़ी चलाने को मजबूर होते हैं। युवाओं में अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो तेज गाड़ी चला तो लेते हैं पर नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे वो हादसे की वजह बनते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यातायात के नियमों के महत्व को अपनी सुरक्षा के लिए समझें। सड़क नियमों से हमें अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है, जैसे कि मध्यम गति बनाए रखना, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश ना करना और गति कम करके वाहन रोकना, इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति को खुद के साथ साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए, आपकी हड़बड़ाहट या जल्दबाजी उनको खतरे में डाल सकती है, इसीलिए कोशिश करें कि आप गाड़ी धीरे और सावधानी के साथ चलाएं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की अनुपस्थिति पाकर नियम तोड़ देते हैं, हमें यह समझना होगा कि नियम पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए होने चाहिए। जल्दी पहुंचने की चाहत जीवन भर की देरी का कारण बन सकती है। जब हम गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं या रेड लाइट जंप करते हैं तो हम न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि सामने वाले बेकसूर इंसान की जिंदगी से भी खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए यातायात नियमों का उल्लंघन करना केवल एक कानूनी अपराध नहीं बल्कि एक नैतिक और सामाजिक अपराध भी है। दोस्तों, यातायात के मुख्य नियम है हेलमेट और सीट बेल्ट। हेलमेट लगाने से सिर की चोटों से होने वाली 70% मौतों को रोका जा सकता है। इसी तरह कार या चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने से आपको झटके से शीशे से टकराने या गाड़ी से बाहर गिरने से बचाती है। इसे बोझ ना समझे, यह आपका सुरक्षा कवच है। यातायात हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? परिवहन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह लोगों, वस्तुओं और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। चाहे हम बस से स्कूल जाएं, ट्रेन से दूसरे शहर की यात्रा करें, परिवहन के विभिन्न साधन यात्रा को आसान व अधिक आरामदायक बनाते हैं। दोस्तों, यातायात के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना व कराना आवश्यक है। भारत में हमेशा सड़क के बाईं ओर वाहन चलाएं, ट्रैफिक लाइट का पालन करें, लाल बत्ती पर रुकें, पीली बत्ती पर धीमा करें और हरी बत्ती पर आगे बढ़ें। किसी भी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार में वाहन धीमी गति से चलाएं। दो पहिया वाहन में ISI मार्क वाला हेलमेट का ही प्रयोग करें और हमेशा अपने वाहन को निर्धारित गति के भीतर चलाएं। ओवरटेक ना करें, दूसरे वाहन से एक सुरक्षित दूरी बनाएं। जेब्रा क्रॉसिंग या क्रॉसिंग एरिया फुटपाथ पर पैदल यात्रियों को रास्ता दें। इंडिकेटर का प्रयोग करें, मुड़ने या लेन बदलने से पहले इंडिकेटर का संकेत अवश्य दें। मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता दें, एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी को पहले निकलने दें। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी ना करें। आज के युवा वाहन व रफ्तार के शौकीन हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी माता पिता की भी है कि वे कम उम्र में बच्चों को वाहन ना दें। स्कूलों और कॉलेजों में यातायात साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। यदि कोई बच्चा अपने पिता को बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के देखता है तो वह भी वही सीखता है। हमें अपने घर के बड़ों को टोकना होगा, यदि वे नियम तोड़ रहे हैं। बदलाव की शुरुआत घर के गैराज से होनी चाहिए। दोस्तों, दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। यदि हम सड़क पर किसी को घायल देखें तो डरे नहीं। अब कानून गुड सैमरिटन यानी नेक व्यक्ति की रक्षा करता है। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और सही समय पर पहुंचाई गई मदद किसी का घर उजड़ने से बचा सकती है। यातायात नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति वही है जो सड़क पर दूसरों के प्रति सहानुभूति भी रखे। सड़कें देश की धमनियां हैं, उन्हें खून से लाल न होने दें। पुलिस का काम चालान काटना है, लेकिन आपका काम सुरक्षित घर पहुंचना है, क्योंकि कोई घर पर आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। यातायात के नियमों का पालन करना किसी उपकार की तरह नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कर्तव्य की तरह अपनाएं। दुर्घटना से देर भली और सावधानी में ही समझदारी है।
9: दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत अभी आपने सुनी यातायात नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी विषय पर परखा कनवाल की ये वार्ता। लीजिए एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इतिहास के पन्नों में हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा नगर है। राव जोधा ने आज ही के दिन 12 मई साल 1459 में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे छितर के पत्थरों से होती है। 12 मई 1797 में फ्रांस के नेपोलियन प्रथम ने वेनिस पर विजय प्राप्त की। 1847 में आज ही के दिन विलियम क्लिंटन ने ऑडोमीटर का आविष्कार किया था। 1926 में हवाई पोत नॉर्गे उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाला पहला पोत बना। इजराइल और पश्चिमी जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान 1965 में आज ही के दिन से शुरू किया था। 12 मई 1875 को महाराष्ट्र में डेक्कन दंगे शुरू हुए। यह आंदोलन किसानों द्वारा साहूकारों और अत्यधिक कर्ज के खिलाफ किया गया था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी राजबिहारी बोस 12 मई 1915 को जापान को रवाना हुए थे। भारत की प्रसिद्ध विमान वाहक पोत INS विराट 12 में 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दोस्तों, साथ ही प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन करने वाले कृष्णचंद भट्टाचार्य का जन्म 1875 में आज ही के दिन हुआ। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्ण का जन्म भी 1945 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म 1989 में हुआ था। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 में आज ही के दिन हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। चलिए एक बार फिर से करवाते हैं आपका मनोरंजन एक खूबसूरत से गीत के साथ।

बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर और जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, पॉपुलेशन वॉच के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब के पार कब पहुंची, जिसका सही उत्तर है 11 मई 2000 को। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान, अब्बासी उबरकोट बुलंदशहर से, ग्राम नागर कोहरा से, बबलू साहू, चामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार ने, एसएम जावेद गुमला झारखंड से, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, प्रज्ञानंद देवांगन। दोस्तों आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9431011122। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है उत्तरायण कार्यक्रम।

कार्यक्रम उत्तरायण सुननी सभी श्रोताओं के मनीषा मेहरात नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छु श्रोताओं अपु लोगों कार्यक्रम उत्तरायण में जमे बातचीत के दगड़ अपु लोगों मनोरंजन न करी जल। तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत कर लेनू थोड़ बातचीत दगड़। श्रोताओं बोठड़ाओ हमार धरती सबु हबेर अनमोल धरोहर छिन। धरती पर जीवनक अस्तित्व पूर्ण तरीकर प्रकृति और हरियाली पर निर्भर रू। मनखी चाहे कदुक ले आधुनिक किलनी है जो, लेकिन प्रकृति बिना अपन जीवन के नहीं चला सकन। हमको शुद्ध हाउ खान औषधि फल फूल और जीवन के लिए आवश्यक सामान बोठ डवा बटी प्राप्त हूँ। रातिक ठंड और ताजी हाउ गाढ़ भिड़ा में लहराई फसल और फूलों खुशबू जीवन में सुख शांति अनुभव करूँ। असल में बोठ डाव केवल पर्यावरण सुंदरता नहीं बढ़ूं, बल्कि पूर्ण धरती जीवन चक्र कले संतुलित पड़ाए रखनी। लेकिन श्रोताओं आजक बखत में बढ़ते रूणीवाल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अलग अलग प्रकारक रोग पौधों स्वास्थ्य के प्रभावित करनी, यह सिद्ध असर मनखी जीवन पर पड़ना। यह लीजिए पौधों के स्वस्थ और सुरक्षित रखन पहली हबीर ले कई ज़्यादा जरूरी है गो। यही उद्देश्य हर साल 12 मई हूँ अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाई जा। ये दिवस हमको यह संदेश दियो कि अगर हम अपन प्रकृति और पौधों स्वास्थ्य की रक्षा करनो, तबे ऊनी वाल पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बढ़ पाल। श्रोताओं यह दिवस के मनोरक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2022 में करी गई और 12 मई 2022 हूँ पहल अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस मनाई गो। श्रोताओ मन की जीवन पूर्ण तरीकल पौधों पर निर्भर छू। हमको जो अनाज फल साग सब्जी और औषधि प्राप्त होनी, उस सब बोठ डवाक देन छू।

बोट डाउ वातावरण के शुद्ध बढ़ूनी और पृथ्वी पर जीवनक संतुलन बनाए रखनी। विशेष रूपल भारत जैस कृषि प्रधान देशों में बोट डवाक महत्व और ज्यादा बढ़ जा, किले की यहाँ लाखों मनख्यूब आजीविका खेत पर निर्भर छू। अगर बोट डाउ सुरक्षित और स्वस्थ रोला तो फसल उत्पादन भल हल, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत है और देश लय प्रगति करोल। लेकिन श्रोताओ, आजक बखत में बोट डवाक स्वास्थ्य लीजी बहुत चुनौती ठड़ेगी। जलवायु परिवर्तन कारण मौसम में असंतुलन बढ़ गो, जैल फसल प्रभावित होने और कई प्रकार कीट और रोग पौधों के नुकसान पहुँचोने। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों प्रयोगल मटक उर्वरता कम होने, यक दगे जंगों में बोट डवा कटाई और प्रदूषण प्रकृतिक संतुलन का बिगाड़ना, ये सभी कारणों बोट डवा की सुरक्षा संरक्षण और उनर स्वस्थ ऋण आज एक ठुल आवश्यकता बढ़ गई। श्रोतावे दिवस के मनोनक उद्देश्य मनखु के पौधों के स्वास्थ्य और उनर संरक्षण प्रति जागरूक करण छु। ये दिवस हमको यह समझूनक प्रयास करूं कि बोट डाव प्रकृतिक सुंदरता बढ़ूनक साधन तो छीने, ये कदक मनखी जीवनक पर्यावरणक और पूर्व जीव जगतक अस्तित्वक आधार लछिन। अगर बोट डाव स्वस्थ रौला तब है मनखी के शुद्ध हाव पौष्टिक खान और स्वच्छ वातावरण मिलोल। यह कले जी बोट डवाक रक्षा करण असल में मनखी जीवनक और ऊनी वाल भविष्यक रक्षा करण छू। यह कदग मनखियों मन में प्रकृति प्रति प्रेम और जिम्मेदारी भावना लय विकसित करण छू। आज आधुनिकता और विकासक दौड़ में मनखी लगातार प्रकृति है वे दूर होते जानो। बोट डवाक अंधाधुंध कटाई प्रदूषण बढ़नल रासायनिक पदार्थों उपयोग और जलवायु परिवर्तन पौधों स्वास्थ्य के नुकसान पहुँचोने। यस मैं यो दिवस मनखियों के यो संदेश दियो कि अगर बखत पर बोट डवाक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दीगो तो उड़ी वाल भविष्य में खनक कमी पर्यावरण असंतुलन और अनेक प्राकृतिक समस्या पैदा सकनी। श्रोताओ, यह दिवस के मनोनक उद्देश्य केवल एक दिन तक सीमित नहतू, बल्कि मनखियों की सोच और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लियो छू। ये दिवस हमको यह प्रेरणा दियो कि हमको अपन आस पास बोट डाव लगूं चैन, उनर स्वास्थ्य बराबर ध्यान रखन चैन और प्रकृति संतुलन का बनाए रखने में अपन योगदान देन होल। जब समाजक हर एक मनखी बोट डावाक महत्व का समझल और उनर देखभाल करल, तब बोट डावले सुरक्षित रोल और पृथ्वी पर जीवन ने सुरक्षित स्वस्थ और खुशहाल बड़ी रोल। श्रोताओ, यो तो छी हमार बोट डावाक बारे में बातचीत कि उनको हम कसी स्वस्थ उनर स्वास्थ्य कसी ध्यान रख सकनो। हगल सुनो आप लोगों के यो कुमाऊनी लोकगीत।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, हगिलापु लोगों के सुनो, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पादप स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में इनर भूमिका विषय पर लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर पिथौरागढ़ वनस्पति विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार भाकुनी जी दगे मनीषा मेहरा की यो भेंटवार्ता।

0: श्रोताओं, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि पेड़ पौधे केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। हमारे भोजन से लेकर स्वच्छ हवा और संतुलित पर्यावरण तक सब कुछ पौधों पर निर्भर रहता है। इसलिए पौधों का स्वस्थ रहना हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में हमारे साथ शामिल हैं लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर पिथौरागढ़ के वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार भाकुनी जी, जिनसे हम जानेंगे पौधों के स्वास्थ्य के बारे में और पौधों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों के बारे में। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सर, सबसे पहले सर आप हमारे श्रोताओं को बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है?
1: अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है और इसके पीछे जो मेन कारण है वह है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनकी हेल्थ के बारे में हम कैसे अवेयर हो सकते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसी बात को ध्यान पे रख के हर वर्ष 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया जाता है।
0: सर, हम अक्सर मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं लेकिन पौधों के स्वास्थ्य पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, तो पौधों का स्वस्थ रहना मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है?
1: आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पौधों का स्वस्थ रहना मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं, चाहे हम अपनी ही बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स ही हम लोग हैं, मानव को जिस तरह हर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसी तरह से पौधों के स्वस्थ रहने से मानव जीवन की जो रिक्वायरमेंट है पौधों से, हमें बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु जिस तरीके से हम देख रहे हैं हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह से पौधों के स्वास्थ्य का बेहतर होना भी मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब पौधे स्वस्थ होंगे तभी पौधों के अंदर पाए जाने वाले विटामिन या अन्य जो लाभदायक खनिज पदार्थ और अन्य पोषक तत्व हैं वो मानव को उपलब्ध हो सकेंगे।
0: सर, आज के समय में फसलों और पौधों में बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसके मुख्य कारण क्या है?
1: इसके जो मुख्य कारण इस समय हम देख रहे हैं, जो पौधों में तरह तरह की बीमारियां बन रही हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन है। हम काफी समय से देख रहे हैं कि इस बीच सीजन बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बरसात के समय न होके पहले ही शुरू हो जा रही है, ऐसे ही गर्मी जो है वो गर्मी में न आके गर्मी से कुछ समय पहले शुरू हो जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। दूसरा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जो अन्य कारण है वो अत्यधिक जो है कृषि तकनीकों के इस्तेमाल है तो वो हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। जहाँ हम सही से तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी हमको क्या होता है कि उसके फायदे होने की जगह नुकसान होने लगते हैं। इन वजह से भी पौधों पे बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि पौधों को क्लाइमेट देखना है, बाढ़ देखना है, सूखा देखना है, गर्मी देखना है, इनमें जो अचानक से परिवर्तन आ रहे हैं इसकी वजह से भी पौधों में बीमारियां बढ़ रही हैं।
0: जी सर, जैसे आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण पौधों पे बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन और बदलते रहने वाले इस मौसम के कारण पौधों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है?
1: तो हम जैसे देखते हैं कि अत्यधिक सूखा या अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक बाढ़ की कंडीशन में क्या होता है कि पौधों का उचित पोषण नहीं हो पाता है। जब उनका उचित पोषण नहीं हो पाता है तो उसपे कई तरह की डिजीजें होनी शुरू हो जाती है, बीमारियां। और जो सबसे ज्यादा बीमारियां उसमें होती हैं वो फंजाई या कवक जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा होती हैं, वेक्टर के द्वारा भी डिजीजें होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजें होती हैं, और फूड और वाटर की कमी होने से भी डिजीज उसपे शुरू हो जाती है, विल्टिंग शुरू हो जाती है उसपे, क्रोनिक डिजीज शुरू हो जाती है, और कई तरह के अन्य जो दिक्कतें हैं वो पौधों पे होनी शुरू हो जाती हैं और पौधों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। जब पौधों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो पौधों का हमें प्रॉपर उससे जो फल मिलने वो भी नहीं मिलेंगे और उनकी उत्पादकता में भी कमी आ जाती
0: है। सर, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को अपनी फसलों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी वैज्ञानिक और प्राकृतिक तकनीकों को अपनाना चाहिए?
1: जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारा देश ज्यादातर जो है मानसून पे निर्भर हमारी कृषि रहती है, तो इस वजह से हमें जो है सॉयल क्वालिटी जो है उसकी टेक्निक्स जो है हमको वो बढ़वानी पड़ेंगी या उन्नत तकनीकें जो है मृदा की वो हमें यूज करनी पड़ेंगी। जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए पौधों के प्रति, और जो हमारे जो मॉडर्न कृषि की टेक्निक्स आ रही हैं वो हमको लेनी पड़ेंगी, अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। और आज के समय पे तो AI टूल्स भी हैं, ड्रोन्स टेक्निक्स भी हैं, जिससे हम सीड डिस्पर्सल कर सकते हैं, दवाएं डिस्पर्सल कर सकते हैं, पौधों के ऊपर डाल सकते हैं, ताकि उसमें प्रॉपर अमाउंट में, सही सही अमाउंट में पौधों के ऊपर ये चीजें पड़े, जिससे कि पौधों पे जो बीमारियां हैं वो ना हो। और इनके हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए सॉयल की हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधा जिस बेस पे ग्रो करता है वो उसके लिए सॉयल ही है, सॉयल ही उसका मेन पार्ट है, जिससे पौधा सारे पोषक तत्व लेता है। तो अगर मिट्टी पे हमें पौधों को जो आवश्यक खनिज पदार्थ या लवण है या जो भी पोषक तत्व तो उन्हें मेजर और माइनर चाहिए वो प्रॉपर मिल रहे हैं, तो पौधे की ग्रोथ खुद ब खुद अच्छी होगी। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट की भी बहुत बढ़िया जरूरत है, सॉयल टेस्टिंग और एनालिसिस की भी प्रॉपर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कवर क्रॉपिंग की जरूरत पड़ेगी, हमारा क्रॉप मैनेजमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा होना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमें नोवल वेराइटीज लेनी चाहिए। नोवल वेराइटीज से सेंस है डिजीज फ्री वेराइटीज जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और वीड कंट्रोल वेराइटीज हमें लेनी चाहिए जिससे कि फसलों को कम से कम नुकसान हो। और अगर कोई मौसम की तकनीक की वजह से मौसम में कुछ दिक्कतें आती भी हैं, बाढ़ सूखा या इससे, तो वो उसको झेल सके। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मॉडर्न टेक्निक्स जो है हमारी AI और ड्रोन्स वाली या स्मार्ट इरीगेशन या वर्टिकल फार्मिंग, इन टेक्निक्स को हम ग्रहण करके इनकी उत्पादकताओं को भी बढ़ा सकते हैं, और बायो फर्टिलाइजर का यूज करके, जैसे आजकल काफी चल रहा है बायो फर्टिलाइजर, बहुत डिमांडिंग है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इस समय की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हमको अच्छी क्वालिटी की चीजें प्राप्त हो सके।
0: तो सर आपने बताया कि हम फसलों को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पौधों में जो रोग लगते हैं उनके पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं, और रोगों को पहचानने के लिए जो शुरुआती स्तर होते हैं वो क्या होते हैं?
1: पौधों पे जो रोग लगते हैं, इसका तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, पौधों पे कोई भी रोग तब लगेगा जब उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी, चाहे वो अच्छी मृदा उन्हें न मिल पा रही हो, चाहे उन्हें पोषक तत्व मेजर माइनर नहीं मिल पा रहे हो, NPK नहीं मिल पा रहा हो, मैग्नीशियम कैल्शियम न मिल पा रहा हो, ऐसे कोई भी रीजन जो होंगी इस वजह से पौधों पे कोई ना कोई डिजीज होगी। इसके अलावा पौधों पे जो पैथोजन से हैं, अलग अलग पैथोजन से उसपे क्या करते हैं कि पौधों पे तरह तरह की डिजीज करते हैं, इसपे जो 90% डिजीज है वो फंगल कवक के द्वारा होती है, और इसमें कई तरह की डिजीजें होती हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू है, रस्ट है, स्मट है, अर्ली ब्लाइट है, रूट टॉप है, इस तरह की कई सारी डिजीजें जो है वो फंजाई के द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया वायरस और निमेटोड्स बाकी अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर था कि शुरुआती दौर में पौधों पे रोग हो रहे हैं हम उनका कैसा पता करेंगे, तो इसके जो प्राथमिक लक्षण होते हैं वो क्लोरोसिस से शुरू होता है। क्लोरोसिस का सेंस है पत्तियों का पीला पड़ना, यानी कि पत्तियां पीला पड़नी शुरू हो जाती हैं, पौधे पीले होने लगते हैं। और विल्टिंग की भी एक समस्या होती है, जहाँ पानी प्रॉपर नहीं निकल पाता है, वहाँ क्या होता है कि वाटर लॉगिंग जब हो जाती है, पानी खूब सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भी पौधे सड़ने लगते हैं। और लीफ स्पॉट डिजीज होती है, जैसे हम देखते हैं पौधों की पत्तियों पे छोटे छोटे छेद से बन जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक में छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, एक में गोल गोल घेरे बनते हैं, उसको लीफ स्पॉट या नेक्रोसिस कहते हैं। पाले की वजह से पौधे जल जाते हैं, कभी कभी स्टंटिंग की डिजीज हो जाती है, कभी मोल्ड हो जाती है। अब पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ही हम कह रहे हैं, तो हम जैसे देखते हैं मेथी के पत्ते हैं या इनके पत्ते पे सफेद सफेद पाउडर जैसा अपीयरेंस दिखता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है और बहुत सारी फसल में फैल जाती है। ऐसे ही रस्ट की डिजीज जो है वो गेहूं धान इन पे होती है, स्मट की डिजीज भी सेरेल्स मिलेट्स में होती है। तो इस तरह की कई तरह के जो रोग हैं पौधों पे, तरह तरह के पौधों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें मेनली क्या है कि 85-90% डिजीज जो है वो फंजाई के द्वारा की जाती है, कवक के द्वारा, और बाकी जो 10-15% डिजीज हैं वो बैक्टीरिया वायरस और निमेटोड्स के द्वारा होती है।
0: जी सर, आपने ये बताया कि जो पौधों में है वो शुरुआती जो रोग लगते हैं उनके लक्षण क्या है, तो सर जैसे आजकल जैविक खेती को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो जैविक खेती पादप स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में किस प्रकार सहायक होती है?
1: जैसे कि आप जानते हैं कि जैविक खेती में हम जैविक चीजों का ही यूज करते हैं। अब जैविक चीज को जब ऑर्गेनिक मैन्योर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होंगे। और जैसे कि हम देखते हैं जब हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइजर का, तो उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है, और कुछ समय के बाद, शुरू में तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता है लेकिन बाद में प्रोडक्शन कम होते जाता है। बट जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पौधे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स में तरह तरह की केमिकल फर्टिलाइजर के उससे डिजीज होती हैं, वो डिजीजें नहीं होती हैं, और उसका प्रोडक्शन अच्छा होने से ह्यूमन की हेल्थ भी अच्छी होती है और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि सबके वेलफेयर में ये काम आता है।
0: सर, जैसे आजकल लोग घरों में पेड़ पौधे लगाने में काफी रुचि रखते हैं, ऐसे में पौधों को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है?
1: जैसे कि हम जानते ही हैं, आज के समय में हर आदमी चाहता है कि हमारे घर के आसपास हमें शुद्ध वायु मिले, तो इसके लिए हम तरह तरह के पेड़ पौधे अपने घर के आसपास लगाते हैं। आजकल तो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक भी चल गई है, जिसमें हम वाटर पे ही मिनरल्स की क्वालिटी से ही, मतलब सॉइल लेस ग्रोथ करा देते हैं पौधों की। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए

0: ध्यान रखना जरूरी है।
1: जैसे कि हम जानते ही हैं, आज के समय में हर आदमी चाहता है कि हमारे घर के आसपास हमें शुद्ध वायु मिले, तो इसके लिए हम तरह तरह के पेड़ पौधे अपने घर के आसपास लगाते हैं। आजकल तो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक भी चल गई है, जिसमें हम वाटर पे ही मिनरल्स की क्वालिटी से ही मतलब सॉइल लेस ग्रोथ करा देते हैं पौधों की। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो हम प्लांट ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। समय समय पर हमें अपनी मृदा की जाँच भी करवानी चाहिए, और इंसेक्टीसाइड, वर्मीसाइड या वीडीसाइड जो ये चीज होते हैं जिससे पौधों पे रोग लगते हैं, इनका हमें प्रॉपर छिड़काव अपने पेड़ पौधों पे जो हमने अपने घर के आसपास लगाए हैं उस पे लगाना चाहिए, ताकि जिससे हमें उनका अच्छा उत्पादन मिल सके।
0: सर, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर क्या संदेश देना चाहोगे?
1: क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे अपने आसपास लगाने चाहिए, पौधों के संरक्षण की तरफ कदम उठाना चाहिए, और अगर अपने आसपास भी हम कहीं ऐसे पेड़ों को कुछ नुकसान होते देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए, और जहां तक संभव हो सके अपने जीवन में हर वर्ष हम एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो हम अपनी पूरे सोसाइटी में, अपनी थ्रू आउट लाइफ में हर आदमी अगर ऐसा करेगा तो ढेर सारे पौधे हम उन्हें लगा सकते हैं, और उन्हें अपने बच्चों की तरह अगर हम पालें तो उन पौधों की हम केयर भी उतनी अच्छे से करेंगे, जिससे हमारा जो पादप दिवस है वो भी फलीभूत होगा।
0: जी सर, हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अल्लाह बुलबुल सुनो, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पादप स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में इनर भूमिका विषय पर लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर पिथौरागढ़ वनस्पति विज्ञान विभागक विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार भाकुनी जी दगे मनीषा मेहरा की और क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
4: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
2: श्रोताओं, हगेलापु लोगों का सुनो नरेंद्र सिंह नेगी स्वर में गाई यो गढ़वाल लोकगीत।

0: श्रोताओं, अल्ला पुलोगु सुना नरेंद्र सिंह नेगी स्वर में गाई यो गढ़वाल लोकगीत।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer. The horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.72 lakhs.
2: Yes, rupees 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just rupees 8999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
0: श्रोताओं, घर हर इंसानक सबो हबेद बुनियादी जरूरत छू। बिना पक्क और सुरक्षित घरक जीवन हमेशा असुरक्षा और चिंताल भरी रू। आज ले हमर देशक कई गांव परिवार यस चिन जो कच्चे मकान, टूटी छत और परेशानियों बीच में अपन जिंदगी जीनी। दियो में, ठंड में और गर्मी मौसम में ले उनका अनेक परेशानियों का सामना करन पड़ू। यस परिवारों के लिए एक पक्क घर केवल रूणक जाग नहीं हुन बल्कि सुरक्षित भविष्य उम्मीद छू। यही समस्याओं के समझ भेर भारत सरकार 1 अप्रैल 2016 हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणक शुरुआत करी। ये खबर पहली यह योजना इंदिरा आवास योजना नामल जानी जा छी, जका बाद में ज़्यादा व्यापक और प्रभावी रूप दिवेत प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में लागू करेगो। ये योजना का मुख्य उद्देश्य गौनुक गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के पक्क मकान उपलब्ध करूँ छू। श्रोताओं, ये योजना के अंतर्गत यस परिवारों के प्राथमिकता दी जाए जो आर्थिक रूपल कमजोर छिन, जनर पास ऋणक लीजिए सुरक्षित घर नहतु, या फिर जो झोपड़ी, कच्चे और जर्जर मकानों में अपन जीवन व्यतीत करनी। श्रोताओं, समग्र आवासक अर्थ केवल चार दीवारी और छत नहीं हुन, बल्कि यस आवास जो सुरक्षित, टिकाऊ और सुविधा युक्त हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणक अंतर्गत बनने वाले घरों में पक्क दीवार, मजबूत छत, रसोई, शौचालय, बिजली, साफ पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाओं के जोड़ी जरो। यह योजना ग्रामीण परिवारों के गरिमापूर्ण जीवन जीनक अवसर प्रदान करो। यह योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक आधार पर करी जाए। ग्राम सभा की स्वीकृति अंतिम चयन सूची तैयार करी जाए, जैल यो सुनिश्चित है सको कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सको। पारदर्शी चयन प्रक्रिया भ्रष्टाचार और पक्षपातिक संभावना लय कम है जाए, जैल योजना पर मनखियों विश्वास ले बढ़ जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता लय प्रदान करी जाए। यह राशि सिद्ध लाभार्थी बैंक खाते में भेजी जाए। यह कदगर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की सुविधा लय प्रदान करी जाए। यह गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ लय कम है जा और वो आसानील पक्का घर बढ़ा।

सकने। श्रोता, यो योजनाक एक ठूल विशेषता यो छु कि घरक स्वामित्व सैनिक नाम पर या सैन या मैस दुनूक नाम पर करी जा। येल गोनुक सैनियों सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हों, सैनियों के आत्मसम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेनक अधिकार न मिल जा, जो ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव लूनक एक ठूल संदेश छू। श्रोताओं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारतक विकासक दिशा में एक ऐतिहासिक पहल छू। समग्र आवास यह सोच तगे यह योजना केवल घर उपलब्ध नहीं करून, बल्कि ग्रामीण परिवारों के सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन प्रदान करे। अगर यह योजना के निरंतर गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता दगे लागू करी जाला तो यह ग्रामीण भारतक तस्वीर बदलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारतक निर्माण में सहायक सिद्ध हो सके।

श्रोताओं, अल्ला पुलो भू सुनो शंकर उप्रीतीक स्वर में गाई यो कुमाऊनी लोकगीत। श्रोताओं, आप जाना जाने अपुलोगु का सुनो सीमा अनिल सहगील और इनर दगड़ियुक स्वर में गाई यो गढ़वाल लोकगीत।

श्रोताओं, अल्लाह पुलुगुल सुनो सीमा अनिल सहगल और इनर दगड़ियुक स्वर में गाई यो गढ़वा लोकगीत। यक दगा श्रोताओं, अब बखत है गो आजक उत्तरायण कार्यक्रम के संपन्न करनर। भो अपु लोगो दगा फिर भेट हेली, तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दियो आज्ञा। नमस्कार।

अभी श्रोता उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। समय पर कार्यों को पूरा करने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया। और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और एटीएस का फ्लैग मार्च, धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
1: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज पौड़ी में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और जनहित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पेयजल और विद्युत सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री महाराज ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया।
3: आज एक महत्वपूर्ण बैठक हमने ली है, चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र की बैठक ली है, जिसमें कि लोक निर्माण के सारे जो काम हुए हैं, सड़कों का हम लोगों ने अनुश्रवण किया। इसके साथ साथ बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। पेयजल की जो हमारी योजनाएं हैं, जेजेएम की योजनाएं हैं, उनके बारे में, पीएमजीएसवाई के बारे में, बाल विकास के बारे में, ग्रामीण निर्माण विभाग के बारे में, तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और सबको आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को कि वो तेजी से काम करें, अच्छी गुणवत्ता से काम करें ताकि हमारे पहाड़ की समस्या का समाधान हो।
1: हरिद्वार से शुरू हुई विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का प्रदेश के विभिन्न जिलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में डोली यात्रा के बागेश्वर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड केवल चार धाम यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ अनेक सिद्धपीठ, प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से न केवल धार्मिक चेतना को जागृत किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

0: इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से हुआ और हरिद्वार जिला देहरादून उत्तरकाशी टिहरी रुद्रप्रयाग पौड़ी चमोली होते हुए आज बागेश्वर जनपद में कोट भ्रामरी में आके और बागनाथ जी के दर्शन करने पहुंची। इस यात्रा की जो पूरी परिक्रमा है वो 10,500 किलोमीटर की है प्रतिवर्ष की। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे, उसकी रक्षा हो। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे चार विश्व प्रसिद्ध धाम है, उत्तराखंड में ऐसी 1000 शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है।
1: नगर निगम देहरादून की ओर से आज दून विश्वविद्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत एक विशेष नागरिक फीडबैक अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ को नगर निगम द्वारा शहर में संचालित विभिन्न स्वच्छता और जनहित कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने छात्रों को स्वच्छ सर्वेक्षण में नागरिक फीडबैक के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक का सकारात्मक सहयोग देहरादून को देश के अग्रणी स्वच्छ शहरों में स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: एम्स ऋषिकेश में आज उन्नत ट्रॉमा देखभाल, अंगदान और नर्सिंग उत्कृष्टता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही अंगदान करने वाले दानदाताओं और उनके परिजनों को भी सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नर्सिंग सेवा करुणा, समर्पण और मातृत्व की भावना का जीवंत स्वरूप है। गंभीर अवस्था में मरीज के लिए नर्स केवल स्वास्थ्यकर्मी नहीं बल्कि विश्वास, सहारा और आत्मीयता का प्रतीक बन जाती है। अंगदान के महत्व पर बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह मानवता का सर्वोच्च दान है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करता है। उन्होंने समाज से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस, टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बना रहा है। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए आज चमोली पुलिस एटीएस और सात असम एटीएस ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही होटल, अस्पताल, पार्किंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सतर्क रहने की अपील की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा गया। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ निरंतर कार्य कर रही हैं।
3: हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन बद्रीनाथ धाम में या जनपद में प्रवेश न कर सके। इसके लिए हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से इस प्रकार की ड्राइव विभिन्न एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चलाई जाती रहेगी। आईटीबीपी की टीमें भी हमारी मंदिर सुरक्षा और मंदिर के आसपास के परिसर में तैनात की गई है, उनको भी हम लोग नियमित रूप से चेकिंग में शामिल कर रहे हैं। बीडीएस की टीम भी बद्रीनाथ धाम में मौजूद है, वह भी लगातार किसी प्रकार के संदिग्ध वस्तु व्यक्ति पर नजर बनाए रहे।
1: उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा और वन स्टॉप सेंटर के कार्य संचालन को लेकर बैठक की। उन्होंने हर वर्ग के पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए रोस्टर बनाने, बाल श्रम व भिक्षावृत्ति को रोकने और निराश्रित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के निर्देश दिए।
4: सभी सीडीपीओ को निर्देशित किया गया है कि आप नीचे तक फील्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तक, आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचकर इसकी समीक्षा कीजिए कि वास्तव में लाभार्थियों को पूर्ण रूप से जो उचित लाभ है, जो उचित पोषण है, वो सही तरीके से वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच।

0: और मेरा प्रयास हमेशा से यही रहेगा कि हम पूरे प्रदेश में अपने जो अंतिम छोर के वंचित असहाय बच्चे जो मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो बाल श्रम कर रहे हैं, जो भिक्षा मांग रहे हैं, बाल भिक्षा कर रहे हैं या कूड़ा बीन रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी चिन्हित कर मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ा जा सके और अन्य सुविधाएं इनको मिल सके।
1: पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज विभिन्न शासकीय संस्थानों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा और बाल विकास व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बिण में आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम श्री प्राइमरी और हाई स्कूल, उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की, समय पर कार्यों को पूरा करने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और एटीएस का फ्लैग मार्च, धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर। ये सभी प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ साथ 101.5 मेगाहर्ट्ज पर एफएम बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का शुभ आरंभ कर रहे हैं शर्मा बंधु की गाई इस भक्ति रचना से। संकट

कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति आपने शर्मा बंधुओं की गाई भक्ति रचना सुनी, और अब लीजिए प्रस्तुत है एक और भक्ति वंदन सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल की आवाजों में।

अनुराधा पौंडवाल और सुरेश वाडेकर की गाई इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटाया गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में रुचि रावत। पहली मुख्य समाचार, परीक्षा पत्र लीक का आरोपों का कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश खुणे आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। हल्द्वानी में नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं थे कुमाऊनी पिछोड़ा निर्माण और स्वरोजगार से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को मिलरू प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था थे लेकी चमोली पुलिस एटीएस और साथ असम एटीएस को संयुक्त फ्लैग मार्च माणागांव तक सघन चेकिंग अभियान चले गया। और मध्यमहेश्वर धाम का कपाट आनवली 21 मई को श्रद्धालुओं का दर्शन खुले जाला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीएन शिक्षा में मेडिकल दाखिला खुणे 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने को फैसला ले। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बोली कि यू फैसला विद्यार्थियों का हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास है ध्यान में रखी की ले गया।
1: एनटीएन बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच खुनी मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने को निर्णय लेनी। एजेंसी ने बोली कि यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों का दगड़ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों को मूल्यांकन करण का बाद लिए गए। परीक्षा खुनी नई तिथि अलग से अधिसूचित करे जाली, पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 खुनी चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहला। दोबारा परीक्षा का खातिर फिर पंजीकरण करण की आवश्यकता नहीं होली और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिए जालू। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बटीन मैं रविंद्र सिंह।
0: नैनीताल जिला का हल्द्वानी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा समर्थित सूक्ष्म उद्यम विकास योजना का अंतर्गत कुमाऊनी पिछोड़ा पारंपरिक और आधुनिक उन्नत कौशल विषय पर 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। कार्यक्रम का तहत 30 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं तय प्रशिक्षण दे जानो। ये मौका पर नाबार्ड का विकास प्रबंधक मुकेश बेलवालन बोली कि प्रशिक्षण का माध्यम से महिलाओं थे आत्मनिर्भर बनान और स्वरोजगार से जुड़ने को प्रयास करे जानो।
2: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोग को हमारा पहाड़ी परिधान है कुमाऊनी पिछोड़ा, इसमें जो नई टेक्निक है, जो नई डिजाइन है, उसके ऊपर ट्रेनिंग यहाँ पर हम करवा रहे हैं और 20 दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। जो हमारा पिछोड़ा एक GI प्रोडक्ट है तो उसको हम देख रहे थे कि यहाँ पर पिछोड़ा में अच्छा कार्य नहीं हो रहा, बाहर से सही यहाँ पर चीजें आ रही है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा GI प्रोडक्ट है तो हम लोग यहीं पर इसको बनाए और नए नए डिजाइन बनाए और इसको आगे बेचें। और हम चाहते हैं जो SHG की महिला है इसको अपनाएं और इसमें आगे जाके अपना बिजनेस करें, एंटरप्राइज स्थापित करें।
0: प्रशिक्षण का दौरान महिलाओं थे कुमाऊनी पिछोड़ा निर्माण की आधुनिक तकनीकों, नए डिजाइनों, पैकेजिंग और बाजार की मांग का अनुरूप उत्पाद तैयार करने की जानकारी दे जाने। दगड़ी ही बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े सत्र भी आयोजित करे जाला। प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं को बुलुंच की आधुनिक तकनीक का माध्यम से पारंपरिक परिधान निर्माण सीखने से उनथे भविष्य में रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलली।
3: ये जो ट्रेनिंग है ये नाबार्ड के सपोर्ट से हो रही है और इसमें महिलाएं इस काम को सीख करके हमारा उद्देश्य है कि आगे अपना रोजगार शुरू करें और जो है इसको

0: हैंडमेड बनाए और उससे महिलाएं अपना आर्थिक विकास कर रही हैं।
1: मेरा नाम है निर्मला जोशी। जैसे हम लोग हमारा ये अपना परिधान है हमारी महिलाओं का, तो हमारा इसमें जैसे हम लोग सीखेंगे, जैसे स्टार्टिंग पहले रहेगा कि कपड़े को कलर करके फिर उसको हम लोग सुखाना, फिर उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग डॉट्स मतलब पॉइंट बनाएंगे।
2: देहरादून में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र का हरबरपुर खुणै स्वीकृत करीब 48 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का विधायक मुन्ना सिंह चौहान निरीक्षण कारी। योजना का तहत स्कूलों का समणी ट्यूबवेल स्थापित करे जाना, जहाँ से क्षेत्रवासियों और स्कूलों तय स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सकली। विधायकन बोली कि हर घर नल हर घर जल योजना का अंतर्गत लंबा समय से पानी की समस्या से परेशान लोगों तय इन पेयजल योजना से बड़ी राहत मिलली। ये दौरान विधायकन पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबरपुर में बन बनिका विकास कार्यों को शुभारम्भ भी करी। यहाँ का अलावा करीब 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाला बास्केटबॉल कोर्ट और खेल मैदान निर्माण कार्य को भी शुभारम्भ करेगा। विधायकन बोली कि शिक्षा का दगड़ी खेल गतिविधियों तय बढ़ावा देन भी जरूरी है, ताकि छात्र छात्राओं तय बढ़िया मौका मिल सके।
3: गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
2: बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था थे मजबूत करना खुणे चमोली पुलिस एटीएस और 7 असम एटीएसन आज संयुक्त फ्लैग मार्च निकाली। ये दौरान बद्रीनाथ धाम से लेकर सीमांत गांव माणा तक सघन चेकिंग अभियान चले गया। सुरक्षा एजेंसियों बद्रीनाथ मंदिर परिसर को निरीक्षण कारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को हालचाल ले। होटल अस्पताल पार्किंग और भीड़भाड़ वाला इलाकों में वाहनों और संदिग्ध मनखियों की जाँच करेगा। देवदर्शनी बैरियर पर सुरक्षा बलों वाहनों और यात्रियों को सामान की चेकिंग कारी वकी माड़ गांव तक गश्त लगे की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे गया। अभियान का दौरान पुलिसन यात्रियों व्यापारियों और स्थानीय लोगों से सतर्क हूँ और कै भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तह देने की अपील कारी। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित पंच केदार में से एक मध महेश्वर मंदिर का कपाट आने वाली 21 मई खुणे श्रद्धालुओं का दर्शन खुणे खोल दे जाला। 17 मई खुणे भगवान मध महेश्वर की उत्सव मूर्ति ओम कालेश्वर मंदिर का गर्भगृह से भैर ए की सभा मंडप मां विराजमान वाली। यहां का बाद 19 मई खुणे भगवान मध महेश्वर की उत्सव डोली ओम कालेश्वर मंदिर भटे प्रस्थान कैरी की रात्रि विश्राम खुणे राकेश्वरी मंदिर पहुंची ली। वकी 20 मई खुणे डोली रांची से रवाना वेकी गोंडार पहुंचली। 21 मई खुणे उत्सव डोली गोंडार से प्रस्थान करली और कर्क लग्न मा विधि विधान का दगड़ी मध महेश्वर मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं खुणे खुले जाला। नई टिहरी नगर पालिका परिषद शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं तय बेहतर बनाना खुणे जल्द ही अपना समूह मा 8 नया वाहन शामिल कर ली। यूं वाहनों को माध्यम से कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था है मजबूत करे जालू। दगड़ी ही नगर क्षेत्र में पहली बार गौ ग्रास सेवा और सब यात्रा वाहन सेवा भी शुरू करे जाली। प्रसूच एक रिपोर्ट।
4: नगर पालिका अध्यक्ष टीहिन बताया कि नई गाड़ियों का औन सी सभी वार्डो में नियमित कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था थे और बेहतर करे जा सकलू। गौ ग्रास सेवा का तहत एक विशेष गाड़ी घर घर जाकी गायों खुनी रोटी सब्जी का छिलका और अन्य खाद्य सामग्री एकत्र कर ली जैथे गौशाला में पशुओं का चारा का रूप में उपयोग करे जालू।
5: अभी 8 वाहन हम बोले उसमें हमारा स्वच्छता के लिए वाहन है, उसमें हमारा वाहन है, उसमें हमारा पानी टैंकर है, उसमें हमारा जो है एक संवाहन का भी हमारा प्रावधान है। और हम शहर को बेहतर बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ बनाने के लिए हमको संशोधन की अत्यंत जरूरत थी और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
4: ये के अलावा नगर क्षेत्र में पहली बार शव यात्रा वाहन सेवा शुरू करे जाली, ताकि लोगों को कम खर्च में सुविधा मिल सकू। वही सड़कों पर लाइटों की मरम्मत पेड़ का पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई खुणी भी विशेष वाहन लगाया जाला। आकाशवाणी देहरादून खुणी टीडीसी जयप्रकाश कुकरेती की रिपोर्ट का दगड़ समाचार कक्ष बठिन मैं रविन्द्र सिंह।
2: देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 27 सालों बटे निकलने वाली विश्वनाथ जगदी शिला डोली यात्रा ये साल भी श्रद्धा और उत्साह का दगड़ी प्रदेश भ्रमण पर निकली। यात्रा विभिन्न धार्मिक स्थलों को भ्रमण कैरी की धार्मिक एकता विश्व शांति और उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को संदेश देने। हरिद्वार से शुरू हुई इन यात्रा में प्रदेश का कई जिला और प्रमुख देवालयों तक पहुँचनी। आज बागेश्वर

0: पहुंचने पर श्रद्धालुओं डोली को भव्य स्वागत करी। यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानिन बोली कि उत्तराखंड में चार धाम का अलावा भी बिजाम महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल छिन, जहाँ तक पर्यटन से जोड़ी की स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर बढ़े जा सकते।
1: जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे, उसकी रक्षा हो, कि जो हमारे चार विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, उत्तराखंड में ऐसी हजार शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी देववाणी संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, संस्कृत के विद्यालय खुले, यहाँ पर ध्यान केंद्र बने।
0: प्रदेश का कुछ हिस्सों में लगातार रुक रुकी की बरखा होनी चाहिए। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले सहित कई जिलों में बरखा की संभावना व्यक्त करी। बरखा का दगड़ी ही चाली, चमकुन, ढांडू और बथौन थैले की ऑरेंज अलर्ट भी जारी करेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4200 मीटर से भी जहाँ ऊंचे वाला इलाकों में यूं पुणे की संभावना चु, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकत, वकी की भोल भी बरखा और खराब मौसम को इन निर्णयों को अनुमान चु। मौसम विभाग केंद्रन पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बरखा और तेज हवा चलने की संभावना जते। 14 मई खुणे भी पर्वतीय क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार बथौन चल सकत। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। परीक्षा पत्र लीक आरोपों का कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश खुणे आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। हल्द्वानी में नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं तय कुमावनी पिछोड़ा निर्माण और स्वरोजगार से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को मिलल प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था थे लेकी चमोली पुलिस ATS और 7 असम ATS को संयुक्त फ्लैग मार्च। माणा गांव तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अरमद महेश्वर धाम का कपाट आनवली 21 मई को श्रद्धालुओं का दर्शन खुणे खुले जाला। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचारों दगड़ी आज कार्यक्रम ग्राम जगत ले यहीं पे संपन्न करने की ममता पांडे के दिया अनुमति। नमस्कार।
3: प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब किसान भाई सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मैं नीरू गोस्वामी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छू आपू सब लोगों का हमारे आज किसान वाणी कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारत एक कृषि प्रधान देश छू और यहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि छू। देशक अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर खेती पर निर्भर करें और बढ़ती जनसंख्या कारण खाद्यान्नक मांग लगातार बढ़ते जानो। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान विभिन्न प्रकारक उर्वरकों को उपयोग करने और उर्वरक पौधों के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने जल फसलों की वृद्धि तेजी लें और उत्पादन बढ़ो। श्रोताओ, किंतु आजकल कई किसान अधिक उपज पाणक इच्छाल उर्वरकों का अधिक उपयोग करन लागनी, यहल माटेक उर्वरता घटते जाने और भूमि कठोर होते जाने और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़नो।

यह कह लीजिए यह आवश्यक है गो कि उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में और सही विधि करी जाओ और संतुलित उर्वरक प्रयोगल फसल की गुणवत्ता बढ़े और माटे का स्वास्थ्य जो थू वो भलो और किसान के अधिक लाभ जो छू वो प्राप्त हो। किसान भाई बहनियों, फसल भूमि लगातार पोषक तत्व ग्रहण करते रहनी, यदि इन पोषक तत्वों की पूर्ति न करी जाओ तो माट कमजोर है जानी और उत्पादन घटन लगनो। यह कह लीजिए खेतों में उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है जान। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग का अर्थ चूंकि माट और फसल की आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा, सही समय और सही विधिल उर्वरकों का उपयोग करी जाओ। केवल एक ही प्रकारक उर्वरक अधिक प्रयोग करन उचित निछु। उदाहरण के लिए यदि किसान केवल यूरिया अधिक उपयोग करनी तो पौध हरी तो हुनी पर जो भी जड़ छी वो कमजोर है जानी और माटे गुणवत्ता ले यह खराब होते जानो। तो यह कह लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासक उचित अनुपात में प्रयोग करन चाहे दगड़ में ही जैविक खादों का उपयोग बहुत आवश्यक है जहाँ शुद्ध संतुलित प्रयोगक विधि ले एक बार हम बात कर लूँ तो माटक परीक्षण आधार पर उर्वरकों का चयन करन चाहे जैविक और रासायनिक उर्वरकों का संयुक्त उपयोग करन चाहे और आवश्यकता है वे अधिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करन चाहे और शुद्ध उर्वरकों का उचित गहराई पर डालन चाहे और फसलक प्रकारक अनुसार उर्वरकों की मात्रा तय करन चाहे और सूक्ष्म पोषक तत्वों का लय ध्यान धरन चाहे। श्रोताओं, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग वर्तमान बखत में सबसे ठोस आवश्यकता छू। यह केवल अधिक उत्पादन प्राप्त करणक साधन नहीं छू बल्कि माट पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपाय छू और किसानों को चाहे कि वो वैज्ञानिक तरीके अपनाओ, माटक परीक्षण करवाओ और जैविक और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करो। यदि हम उर्वरकों का प्रयोग सही तरीके से करूँ तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होल और किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत होल और देशक खाद्यान्न सुरक्षा ले सुनिश्चित होल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओ, कार्यक्रम में अगिल के सुनो या भेंट वार्ता जैविक खाद और उर्वरकों के महत्व विषय पर ब्लॉक हवालबागक महिला कृषक दया साहक दगड़ भेंट वार्ता और इन दगड़ बातचीत करण लाग रही नीरू गोस्वामी। श्रोताओ, आज हम ए रही ब्लॉक हवालबाग और हमार दगड़ बातचीत करण लाग रही एक महिला कृषक, तो आओ इन्हें दगर करनो बातचीत। दया जी, बहुत बहुत स्वागत छो आपको हमारे कार्यक्रम में। पहले हमारे श्रोताओं के अपन परिचय दियो।
7: दया शासिन फलबाग ब्लॉक बटी छिन, खेती बाड़ी करनो।
6: हाँ। कदो साल है आपको यह खेत बाड़ी करते हुए?
7: अरे खेत बाड़ी बुढ़ी गई हम यो तब बटी खेत बाड़ी।
6: अच्छा, पहली बटी तुम खेत बाड़ी कर छो?
7: हाँ।
6: अच्छा, तो तुम्हारे पास खेत बाड़ी करने के लिए कदो जमीन छो? एन
7: तो हमारे पास 3-4 नाल ज्यादा छू सीखते।
6: अच्छा, तो मतलब छू तुम्हारे पास खेत?
7: हाँ।
6: तो तुम के खेत बाड़ कर छा, के पोछा खेतों में?
7: पहले बिना धान जो मडू झूर सब पूछी, पहले बिना मडू झूर धान भट घोट।
6: अच्छा अच्छा,
7: सब चीज पूछी ने।
6: अच्छा,
7: अब तो बंदरू नहीं ओपन।
6: अच्छा।

0: तो अपन खाना के लीजिए है जहाँ तुम्हारे
1: आप कहाँ हूँ पहली भी ना तो है जैसी आप नहीं होने
0: अच्छा हाँ तो तुम जैसे खेत बाड़ कर छा ने तो साग पात बोछा या कोई ले फसल बोछा तो उमें कोवल खाद का प्रयोग कर छा
1: हम ये घर पर गोबर गोबर खाद जम कर लो
0: अच्छा
1: निकालो वो जम वो कर दे फिर बाद वो सड़ जा तब खेत में डालो
0: अच्छा हाँ। तो लगभग कदू बखत लग जाए या खाद को तैयार होने में
1: 15-20 दिन लग जाए
0: अच्छा हाँ। तो तुम कैसे तैयार कर छा को मतलब जैसे कि तुम मोह निकाल छा तो कहाँ रख छा
1: मोह निकाल कर घर को पिछाड़ी ही डाल दिन बाद में 15-20 दिन बाद सड़ जाऊँ

0: खुदण में काल है जाने हो।
1: तो जैसे तुम जैविक खाद का प्रयोग कर जाने तो अगर वो काच मऊ डाल देनी खेतों में तो के हो
0: मिल कुरमू लग जाए, कीड़े लग जाने में कुरमू है जाए। तब ये भी पेड़ों को काट दियो कुरमू।
1: अच्छा,
0: काच गोबर के नहीं डालने खेतों में। हाँ
1: अच्छा, तो जैसे बाजार खाद ले होनी और या तुम जैविक खाद का प्रयोग कर छा तो बाजार खाद में कुन्नी की बहुत से रसायन होनी तो तुम के कौन छा छा एक बार में
0: हम नहीं डाले खाद को। खाद बेकार वाली ही नहीं कीड़े की, यो घर वाले खाद तो यही है गोबर घर खाद ही सही।
1: अच्छा, तो के लाभ होनी है जो हम गोबर खाद तुम यूज कर छा ने खेतों में तो के लाभ होनी खेतों में?
0: अब फसल भर नहीं हूँ मैं, कीड़ी लागन और जब ज्यादा हम खाद गोबर डाल लो जब मो डाल लो जब उतु ज्यादा भर हो उसको ही पान ले चाहे खाऊ ले चाहे सब बराबर चाहे घर वाले मो में।
1: और जो जो वो बिल्कुल प्योर चीज है जोला
0: है। हाँ
1: जोला उत्पादन हो बिल्कुल प्योर हूँ
0: और कोई चीज वो मैं के केमिकल वॉल नहीं होने कोई सब्जी हो के हो बड़ी वाल वो सब्जी
1: के लगे आजकल बहुत सी बीमारियां होने लग रही तो ये जो रासायनिक खाद छू या प्रयोग होनी ने आजकल बाजार में जो जो साग पात हो या जो ले फसल है उनमें रासायनिक चीजों का इस्तेमाल हो तो ये आजकल बहुत सी बीमारी होनी
0: इंजेक्शन लगावे ठुले जानी हो हमारा यश नहीं है प्रकृति वाल छू हम लोगों
1: बिल्कुल।
0: हाँ कोई बीमारी न साफ सुथरा हो छू।
1: आजकल जो औजार छिन उनर इस्तेमाल कर छा या पुराने रूप पर खेत बाड़ कर छा
0: जैसे कुटा उटा उसके ही बोलन गए जो आजकल ट्रैक्टर चल गई हो बल्द हो तो हम छन कहीं ट्रैक्टर लगानी है।
1: अच्छा, तो तुम्हारे वहाँ ट्रैक्टर इस्तेमाल हो?
0: हो नन वाला ट्रैक्टर
1: तैयार कर छा खेतों के जैसे कोई फसल बो छा तुम वी हबेर पहले खेत कैसे तैयार कर छा?
0: पहले उमें साफ सफाई करन पड़ी और गोबर होबर डाल दी फिर मरी बेटी ट्रैक्टर फिर तब झाड़ा निकालना पड़ो ट्रैक्टर लागी बेटी साफ कर दिए खेत को तब तैयार होने तब बीज बोई जाए गोबर वोबर डाल दीजिए पानी वानी।
1: अच्छा, तो कदू बार तुम खेत का ट्रैक्टर बाछा?
0: ट्रैक्टर तो दी बार वो एक बार पहले वो कर ली फिर दूसरी बार फिर हल्के वाल करना पड़ो।
1: अच्छा, तो सिंचाई के साधन छिन तुम्हारे वहाँ?
0: हम वहाँ पंप सिंचाई लीजिए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो पंप कैसी इस्तेमाल कर छा तुम?
0: पाइप द्वारा या नाली हाली बड़े भी।
1: तो ये जैविक खाद तुम कहाँ बटी ला छा?
0: वो हम घर में ही रहूँ।
1: अच्छा, तो कदू गोर बात छे तुम्हारे?
0: एलते ही कई सी दी तीन दिन होनी मतलब।
1: तो लगभग तुम्हारे पास खाद मतलब है
0: जे की छो
1: है जे मतलब अपन जो गोरबा
0: छे मेरे तो बाहर अलमार अलमार और जगवान ले नहीं जानी कट्टो में भर वे।
1: अच्छा,
0: आप लीजिए।
1: अच्छा,
0: इसे फूल में उमे डाल हूं और को।
1: अच्छा, तो तुम एक को बेचा या उसी के
0: दे? उसके ही दिन।
1: अच्छा, तो ये तो बहुत भल बात छो। तुम
0: 50-50 किलो कट ये बिलो किलो वाले लो नहीं जो ओगनी सुबह भाई खोद देना यार मैं ले कट्टा भर देना गए भर दी उन्हो आप ही ले जानी गाड़ी में तुम ले जाओ जैसे ले जाओ।
1: बिल्कुल, आजकल तो सबू को पता है गो कि ये जो खाद छू बहुत बड़ी छू ने यार कोई ले बीमारी नहीं होनी
0: होना। हाँ, हमारे तो ये ताजी बढ़िया खाद ले कोई मिलावट नहीं कोई की नहीं।
1: बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज जो ले उत्पादन हो वो ऑर्गेनिक ही होना। अच्छा अच्छा, जो खेती बाड़ी काम छू या एकला कर छा या कोई काम में लगू छा?
0: लगा ली नो। हाँ, लगा ली पहले।
1: अच्छा अच्छा,
0: करण छे थोड़ी।
1: तो आज आजकल जो बेरोजगार छिन ने जो पढ़ी लिखी तो छिन लेकिन खाली बैठरीन तो उनर पास जमीन रह छू तो के कौन चाचा उन उन थे
0: करण छे हम मेहनत कर दे है तो जल थोड़ी।
1: अगर वो साग पात बोला
0: ना,
1: कोई ले तो वो कह बेच बेच ले
0: बेच बेच एल हमारे वही हरी या सब हरी आलू कतु दीदी तीन तीन मणा आलू हरी सब। अब हमारे तो बार एक घर का पिछाड़ी पुन खेत बाढ़ छिन पर मैं बानर धरने नहीं।
1: अच्छा,
0: जैसे बोलो उखाड़ बेच नहीं ले जानी।
1: तो तुमन के खेत बाड़ी काम करते हुए कस लागू?
0: भल लागू के लेने एक आम तक भल लागू
1: मतलब कि अपन जब पास जमीन छू अपन पास हुनर छू तो हमन के खाल नहीं बैठन छे खेत बाड़ी करन छे द्वि हमार लीजिए ले हजारू अगर ज्यादा हो तो बेच बेच दू डबल ले हमार।

0: ठीक है, मिल सकनी। तो दया जी तुम मूल हमारे दगर बातचीत करी और हमारे किसान भाई बहनों को तू भल जानकारी दे, यह कह लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्ले आप लोगों ने सुनो यह बातचीत जैविक खाद और उर्वरकों महत्व विषय पर ब्लॉक हवालबागक महिला कृषक दया साहक दगर बातचीत और इन दगर भेंट करने लागू जी नीरू गोस्वामी।

0: श्रोताओं अल्लाह आप लोगों सुनो प्रहलाद सिंह मेहरा स्वर में गाई यो लोकगीत।
1: किसान मान धन योजना
2: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, हमारे देश के अधिकांश जो जनसंख्या छो वो गांव में निवास करें और वो कृषि पर ही निर्भर करें और प्राचीन बखत में ही हमारे देश में प्राकृतिक और पारंपरिक खेती करी जाए। किसान गोबर खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग कर बे खेती करनी, यह भूमि उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण ले सुरक्षित रहूं। लेकिन बखतक दगड़ ही अधिकांश उत्पादन प्राप्त करणक होड़ में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होने लग रहो, जैल उत्पादन तो बढ़न लग रहो पर माटक जो उर्वरता क्षमता छू वो घटन लग रहे और जल स्रोत प्रदूषित होनी और मानव स्वास्थ्य पर बुर प्रभाव पड़न लग रहो। यह स्थिति में जैविक कृषि महत्व और ले बढ़ गो। आज आवश्यकता छू कि हम जैविक कृषि के अपनों और स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाओ। श्रोताओ, जैविक कृषि वो खेती पद्धति छू जमे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हानिकारक दवाओं प्रयोग नहीं करी जा। इमें प्राकृतिक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधि का उपयोग करी जा और जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरता बनाए धरण और पर्यावरण की रक्षा करण और पौष्टिक और सुरक्षित खाद्यान्न उत्पन्न करण छू। श्रोताओ, आजकल रासायनिक खेती कारण माटे गुणवत्ता लगातार घटन लग रहे, भूमि कठोर होते जाने और फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होते जाने। यह के अलावा रासायनिक दवाइयों कारण पानी और वायु ले प्रदूषित होते जाने तो रासायनिक पदार्थों तैयार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होनी, कई बीमारियां जस कैंसर, त्वचा रोग और पेटक समस्याएं ले बढ़ते जानी। यस में जैविक कृषि स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण के लिए आवश्यक बन गई। श्रोताओ, जैविक कृषि एक प्रमुख साधन थी जबकि गोबर खाद या माटक माट जो छू उके उपजाऊ बने और कंपोस्ट खाद यह बने जैविक कचरल तैयार हैं और हरी खाद यह खेत में विशेष पौधों के उगे बेर माट में मिले दीजिए और जैविक उर्वरक जो छू वो सूक्ष्म जीव द्वारा बनाई गई उर्वरक छू और प्राकृतिक कीटनाशक जैसे नीम, गौमूत्र और अन्य प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग हमन के अपन कृषि क्षेत्र में करन चाहिए। श्रोताओ, जैविक कृषि आजक बखतक आवश्यकता छू, यह न केवल माट और पर्यावरण की रक्षा करें बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बने। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करूं और रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करूं तो उन्हीं वाल पीढ़ी के स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन हम उनके दी सकूं।
4: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
5: छोटा किसान बने देश की शान।
4: पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6000 रुपए की सम्मान राशि 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम में इन जानकारियों के बाद अगले के सुनो यह लोकगीत।

श्रोताओं संवेद स्वर में गाई योई लोक गीतक दगर हमारे आज किसान वाणी कार्यक्रम इति के संपन्न हूँ। भोल अपू दगर फिर भेंट हुई एल नील गोस्वामी के आज्ञा दियो नमस्कार। श्रोताओं यह कार्यक्रम प्रायोजित छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी किसान भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं।

0: देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगढ़ में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। परीक्षा पत्र लीक होना का आरोपों कारण मेडिकल शिक्षा प्रवेशक लीजी है नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांचक आदेश। हल्द्वानी नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह है जुड़ी श्रेणियों के कुमाऊनी पिछौर बनून और स्वरोजगार बटी जुड़ी नई जमानक तकनीकों मिलौल प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धमक सुरक्षा व्यवस्था के निबेड़ चमोली पुलिस ATS और 7 असम ATS संयुक्त फ्लैग मार्च माणा गौ तक चेकिंग अभियान चलाई गो। और मधमहेश्वर धामक कपाट अणवल 21 मई हते श्रद्धालुओं के दर्शनक लीजी खोल दी जाल। अब समाचार विस्तारल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTL शिक्षा मेडिकल दाखिलक लीजी 3 मई हते कराई गई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कराणक फैसला ली है। सोशल मीडिया पोस्टम एजेंसी को की यो फैसल विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रशिक्षा प्रणाली विश्वास के ध्यान में धरते हुए ली जा रो।
1: बताए कि सरकारल पेपर लीकों की आरोपी की पुर जांचक लीजी मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के सौंपणक निर्णय ले। एजेंसी को की यो निर्णय केंद्रीय एजेंसियों तगड़ समन्वय में NTA द्वारा जाँच निष्कर्षों मूल्यांकन करणक बाद ली गई। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग अधिसूचित करी जाली। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार जानकारी और मई 2026 तक लीजिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रोल। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण करोनक जरूरत नहीं पड़ी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क ले नहीं ली जल। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: नैनीताल जिला हल्द्वानी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बटी समर्थित सूक्ष्म उद्यम विकास योजना के तहत कुमाऊनी पिछौड़ पारंपरिक और आधुनिक उन्नत कौशल विषय पर 20 दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करी गो। कार्यक्रम के तहत 30 स्वयं सहायता समूह में जुड़ी श्रेणियों के प्रशिक्षण दी जा रो। यह मौके पर नाबार्डक जिल विकास प्रबंधक मुकेश बेलवालल को की प्रशिक्षणल श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार हेबे जोड़ने कोशिश करी जा रहे।
2: समूह की महिलाओं को हम लोग जो हमारा पहाड़ी परिधान है कुमाऊनी पिछौड़ा, इसमें जो नई टेक्निक है जो नई डिजाइन है उसके ऊपर ट्रेनिंग यहाँ पर हम करवा रहे हैं और 20 दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। जो हमारा पिछौड़ा एक GI प्रोडक्ट है तो उस पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर पिछौड़ा में अच्छा कार्य नहीं हो रहा, बाहर से सही यहाँ पर चीजें आ रही है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा GI प्रोडक्ट है तो हम लोग यहीं पर इसको बनाए और नए नए डिजाइन बनाए और इसको आगे बेचे। और हम चाहते हैं जो SHG की महिला है इसको अपनाएं और इसमें आगे जाके अपना बिजनेस करें, एंटरप्राइज स्थापित करें।
0: प्रशिक्षण के दौरान श्रेणियों के कुमाऊनी पिछौड़ बनाणक नई जमानक तकनीकों नई डिजाइनों पैकेजिंग और बाजारक मांग हिसाबल उत्पाद तैयार करनक जानकारी दी जा रहे। एक दगड़ बैंकिंग वित्तीय साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग हेबे जुड़ी सत्र लय कराई जल। प्रशिक्षण में शामिल श्रेणियों कुण छू की आधुनिक तकनीकों पारंपरिक परिधान बनाण सीखणल उनके आणवल बखतम रोजगार और आय बनाण मदद मिले।
3: मेरा नाम सुमन अधिकारी। ये जो ट्रेनिंग है ये नाबार्ड के सपोर्ट से हो रही है और इसमें महिलाएं इस काम को सीख करके हमारा उद्देश्य है कि आगे अपना रोजगार शुरू करें और जो है इसको हैंडमेड बनाएं और इससे महिलाएं अपना आर्थिक विकास करेंगी।
4: मेरा नाम है निर्मला जोशी। जैसे हम लोग हमारे ये अपना परिधान है हमारी महिलाओं का, तो हमारा इसमें जैसे हम लोग सीखेंगे जैसे स्टार्टिंग पहले रहेगा कि कपड़े को कलर करके फिर उसको हम लोग सुखाना, फिर उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग डॉट्स मतलब पॉइंट बनाएंगे।
0: देहरादूनम विकास नगर विधानसभा क्षेत्र हर्बर्टपुरक लीजी स्वीकृत करीब 48 करोड़ रुपए के पेयजल योजना के विधायक मुन्ना सिंह चौहानल निरीक्षण करो। योजना के तहत स्कूलक नजदीक ट्यूबवेल लगाई जा रो जैल उफन रूणीवाल मैसू और स्कूली नंतिनु कै साफ पीणक पानी की सुविधा मिल सके। विधायकल को की हर घर नल हर घर जल योजना के तहत बहुत बखत बटी पानी की समस्या परेशान मैसू कै यो पेयजल योजना ठुल राहत मिली। यह दौरान विधायकल PM श्री

0: राजकीय इंटर कॉलेज हर्बर्टपुरम विभिन्न विकास कार्यों के लिए शुभारंभ करो। यह के अलावा करीब 57 लाख रुपए लागतल बढ़ने वाले बास्केटबॉल कोर्ट और खेल मैदान निर्माण कार्य के लिए शुभारंभ करेगो। विधायकल को की शिक्षा दगड़ खेल गतिविधियों के बढ़ावा देने लिए जरूरी छू ताकि स्कूली नातिनों के बहुत मौक मिल सको। माउनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह का दगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। बद्रीनाथ धामक सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत करने के लिए चमोली पुलिस एटीएस और 7 असम ATSL आज संयुक्त फ्लैग मार्च निकालो। यह एक दौरान बद्रीनाथ धाम बटी लिबेर सीमांत गो माणा तक चेकिंग अभियान चलाई गो। सुरक्षा एजेंसियों बद्रीनाथ मंदिर परिसर निरीक्षण कर बेर सुरक्षा व्यवस्थाओं जायजा लियो। होटल अस्पताल पार्किंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों और संदिग्ध मैशों के लिए जाँच करी गई। देवदर्शनी बैरियर पर सुरक्षा बलूल गाड़ियों और यात्रियों समानक चेकिंग करी। वहीं माणा गो तक गश्त कर बेर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। अभियानक दौरान पुलिस यात्रियों व्यापारियों और स्थानीय मैशों हेतु सतर्क रुणक और कश्यल संदिग्ध गतिविधि सूचना सिद्ध पुलिस के दिनक अपील करी। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारूम बटी एक मद महेश्वर मंदिर कपाट आणवाल 21 मई हेतु श्रद्धालुओं के दर्शनक लिजी खोल दी जात। 17 मई हेतु भगवान मद महेश्वरक उत्सव मूर्ति ओमकारेश्वर मंदिरक गर्भगृह बटी भ्यार एबेर सभा मंडपुम विराजमान है। यह एक बाद 19 मई हते भगवान मद महेश्वरक उत्सव डोल ओमकारेश्वर मंदिर बटी प्रस्थान करबेर रात्रि विश्रामक लिजी राकेश्वरी मंदिर पहुँचे। वहीं 20 मई हते डोल राशि बटी रवाना हैबेर गोंडार पहुँचे। 21 मई हते उत्सव डोली गोंडार बटी प्रस्थान करिल और कर्क लग्न विधि विधानक दगड़ भगवान मद महेश्वरक कपाट श्रद्धालुओं के लिजी खोल दी जा। नई टिहरी नगर पालिका परिषद शहरक सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के भल बढ़ाने के लिए जल्दी अपूर्ण ब्यड़ में 8 नई गाड़ी शामिल करते जा रहे। यूं गाड़ियों के जरिए गद्दर प्रबंधन व्यवस्था के मजबूत करी जल। एक दगड़ नगर क्षेत्र में पलीबार गौ ग्रास सेवा और शव यात्रा गाड़ी सेवा लय शुरू करी जल। एक रिपोर्ट।
1: नगर पालिका अध्यक्ष टिहरील बताए कि नई वाहनों को ऊंड जानल सफे वार्डो में रोज कूड़ जमा करी जाल और सफाई व्यवस्था के और भल करी जा सकल। गोग्रा सेवा भीतर एक विशेष वाहन घर घर जेबे गोरु क्लीजी रोट सागों को छिलको और अन्य खाद्य सामग्री जमा करल जेल गौशाला में पशुओं को चारों को रूप में उपयोग करी जा सकल।
2: और अभी 8 वाहन हम बोले उससे हमारा स्वच्छता के लिए वाहन है, उसमें हमारा वाहन है, उसमें हमारा पानी का टैंकर है, उसमें हमारा जो है एक वाहन का भी हमारा प्रावधान है। और हम शहर के बेहतर बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ बनाने के लिए हमको संशोधन की अत्यंत जरूरत थी और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
1: ये एक अलावा नगर क्षेत्र में पहली बार शव यात्रा वाहन सेवा शुरू करी जाली जैल लोगों के कम खर्च में भल सुविधा मिल सकल। वहीं स्ट्रीट लाइट मरम्मत पेयजल आपूर्ति और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए जिले विशेष वाहन लगाई जाल। आकाशवाणी देहरादून के लिए टिहरी बठे जयप्रकाश कुकृतिक दगड़ मी ममता पांडे।
0: देवभूमि उत्तराखंडम पिछड़ 27 सालों बटी निकाली जा रही विश्वनाथ जगदीशिला डोल यात्रा यो साल ले श्रद्धा और उत्साह दगड़ प्रदेश भ्रमण पर निकल रहे। यात्रा विभिन्न धार्मिक स्थलों भ्रमण करते हुए धार्मिक एकता विश्व शांति और उत्तराखंडक आध्यात्मिक विरासत का संदेश दी रहे। हरिद्वार बटी शुरू हुई यह यात्रा प्रदेशक कई जिलों और प्रमुख देवालयों तक पूज रहे। आज बागेश्वर पूजन पर श्रद्धालुओं डोलिक भव्य स्वागत करो। यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानील को की उत्तराखंड चार धामों के अलावा लय बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल छी जिन्हों के पर्यटन बटी जोड़ बेर स्थानीय जवान नातिनों के लिए रोजगार और स्वरोजगार मौक बढ़ाई जा सकनी।
3: इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड की देव संस्कृति और लोक संस्कृति है वो जिंदा रहे, उसकी रक्षा हो, कि जो हमारे चार विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उत्तराखंड में ऐसी 1000 शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की इस यात्रा में डोली ने पूरे प्रदेश में 432 देवालयों को धाम के स्वरूप में चिन्हित करने का संकल्प पूरा किया है। दूसरा उद्देश्य जो हमारी देववाणी संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, संस्कृत के विद्यालय खुले, यहाँ पर ध्यान केंद्र बने।
0: प्रदेश के कुछ हिस्सों में रुक रुक बेर ड्योहुरो मौसम विभाग देहरादून

0: उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरगढ़ दगड़ कई जिलों में द्योहुणक संभावना जतर है। एक दगड़ बहुत तेज द्यो कड़ताए पड़नक, दाव पड़नक और उदगर आणक लय ऑरेंज अलर्ट जारी करी जा रो। मौसम विभाग मुताबिक 4200 मीटर है भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ह्यू लय पड़ सकूं, जैल पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकूं। वहीं भो लय द्योहुण दगड़ मौसम खराब रोणक अनुमान छू। मौसम विज्ञान केंद्र पर्वतीय जिलों में हल्के बटी मध्यम द्यो और तेज हवा चलने की संभावना जतर है। 14 मई है तल है पर्वतीय इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार झोंकदार हवा चल सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। परीक्षा पत्र लीक होना का आरोपों कारण मेडिकल परीक्षा शिक्षा प्रवेशक लीजी है नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच का आदेश। हल्द्वानी नाबार्ड समर्थित 20 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। स्वयं सहायता समूह हेबे जुड़ी श्रेणियों के कुमाऊनी पिछौड़ बनून और स्वरोजगार बटी जुड़ी आधुनिक तकनीकों मिलल प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धामक सुरक्षा व्यवस्था के लिबेर चमोली पुलिस ATS और 7 असम ATS संयुक्त फ्लैग मार्च माणा गांव तक सघन चेकिंग अभियान चलाई गो। और मधमहेश्वर धामक कपाट आणवाल 21 मई हते श्रद्धालुओं को दर्शनक लीजी खोल दी जाल। यह के दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम।

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

ये थी आज के फिल्म संगीत प्रोग्राम की पहली पेशकश अनुराधा पौंडवाल और सुरेश ओबराय की आवाजों में यादों का मौसम फिल्म का गीत। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: इस छोटे से अंतराल के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद राशिद खां का गाया, इरशाद कामिल का लिखा ये गीत, जिसे हमने लिया है जब वी मेट फिल्म से।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.72 lakhs.
1: Yes, rupees 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just rupees 8999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: मार्केट के बारे में क्या
5: परफॉर्मेंस का बोलो
4: मार्केट ट्रेंड
5: सुनने में आया कि
6: आज की खबर पहले ही बोला था ब्रो
5: माय प्रेडिक्शन इज
7: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
5: ये दोस्त ने बोला
8: देवी जी की सुनो
9: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
11: और इस अंतराल के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में गुलजार का लिखा गीत फिल्म का नाम है इश्किया

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV.

0: experience first in segment features like underbody CNG technology.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: राहत फतेह अली खां के गाए इश्किया फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और अब आइए सुनते हैं सबरस कार्यक्रम।

0: परफॉर्मेंस का बोलो
1: बीट द फ्यूचर
0: मार्केट ट्रेंड टेक
1: सुनने में आया कि
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला था ब्रो
0: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
0: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
7: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
6: हा?
7: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
6: सॉरी
7: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
6: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
7: मतलब
6: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
9: और इस अंतराल के बाद सबरस प्रोग्राम की अगली पेशकश श्याम अनुरागी का लिखा गीत गीत को आवाज दी है सुनीता राव ने

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology.
5: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 50,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
0: सबरस प्रोग्राम में इस अंतराल के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं बाली का लिखा गीत। गीत को आवाजें दी हैं शेरोन प्रभाकर और बाली ब्रह्म भट्ट ने।

0: शेरुन प्रभाकर और बाली ब्रह्म भट्ट के गाए इस गीत के बाद सबरस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलजार का कलाम, फनकार भूपेन हजारिका।
1: चाहे वो माहिगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, कि पत्तियां तोड़ती हुई सिर्फ कविता नहीं गा रहे।
2: धूप

भूपेन हजारिका के गाए गुलजार के इस नगमे के साथ आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजारमन। राजारमन, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हुआ। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहले दिन जीत दर्ज की। एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंचे, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक हासिल किया। और ईस्ट बंगाल ने इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग का खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 78 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को नई जान दी।
2: कल का दिन उतार चढ़ाव से गुजर रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए नई उम्मीद लेकर आया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हार का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंद में नाबाद 59 रन और प्रियांश आर्य की 33 गेंद में 56 रन की पारी का रहा। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट लिए। 211 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 33 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद टीम के निचले मध्यक्रम ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल ने 30 गेंद में 56 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि डेविड मिलर ने 28 गेंद में 51 रन की तेज पारी खेली। अंत में आशुतोष ने 10 गेंदों में 24 और माधव तिवारी ने 8 गेंद में 18 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। माधव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही डीसी अंक तालिका में एक पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर आ गई है, जबकि लगातार चौथी हार के बाद पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर बनी हुई है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जिस प्रकार का कल का मुकाबला रहा राजारमन, कह सकते हैं क्या हम ये सोचें कि पंजाब किंग्स की टीम थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही, जो कि लगातार फील्डिंग में आप ढील दे रहे हैं, रन बनाने का मौका दे रहे हैं सामने वाली टीम को।
1: शक्ति, इस सीजन पता नहीं फील्डिंग को क्या हो गया, कई सारे कैचेस छूट रहे। अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन फील्डर भी आसान सा कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आईपीएल में। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से जीत हासिल किया है, पंजाब के लिए ये तकलीफ पहुंचा सकती है लॉन्ग रन में। जो टेबल अगर आप देखें तो पंजाब चौथे स्थान पर है, खिसक के नीचे आ सकते हैं, वो प्लेऑफ शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो खतरा है उनके सामने। अपने गेम को संभालना होगा और फिर जो बाकी 3 मैचेस बचे हैं वो जीतने होंगे पंजाब को। लेकिन कल एक मौका था उनके पास, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग किया है, जिस तरीके से रन अलाउ किए हैं, हालांकि ड्यू फैक्टर काफ़ी बड़ा रहा, लेकिन पंजाब को शायद ये मैच जीतना चाहिए था, उनके हाथ में था ये मैच। और शायद डेविड मिलर की पारी जो बहुत ही बेहतरीन निकली है इन द एंड, आई थिंक दे शुड हैव वन दिस गेम पंजाब।
0: जी बिल्कुल, डेविड मिलर ने इस बार कोई गलती ना करते हुए कह सकते हैं कि टीम को जिताया, और बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस भी नजर आया। और खासकर जो लोअर मिडल ऑर्डर था या फिर जो आखिरी के खिलाड़ी अकीब दर ने वहां पे 2 गेंदों पे 10 रन बनाए और एक बड़ी भूमिका निभाई टीम के लिए।
1: कप्तान अक्षर पटेल कैच छोड़ने के बाद उन्होंने जो अपना हाफ सेंचुरी बनाया वो भी काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहा दिल्ली के लिए। लेकिन पंजाब सिर्फ अपने आप को कोस सकती है, ये मैच उनके हाथ था और मैच से अगर उनके हाथ से अगर निकल गया तो नोबडी इज टू ब्लेम बट पंजाब दैट्स।
0: जी बिल्कुल, और अगर अभी वर्तमान मैच की बात की जाए जहां हैदराबाद और गुजरात आमने सामने हैं, दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं, एक दूसरे स्थान पर है तीसरे में, और जो भी आज जीतेगा वो टेबल टॉप करेगा। तो क्योंकि हैदराबाद अब तक का, गुजरात की बात की जाए, बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई जो अब तक देखने को मिली थी।
1: काफी लो स्कोरिंग मैच लग रहा है अभी तक, हालांकि 11 ओवर ही हुए हैं। 11 ओवर जब तक हुए 80 का भी स्कोर नहीं बना। आजकल तो आपको पावर प्ले में 60-70 रन आसान से

0: आसानी से बन जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग मैच है जो अहमदाबाद में हो रहा है, और मुझे लगता है कि हैदराबाद ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला शायद सही किया है। गुजरात के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जैसा आपने कहा टॉप पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही है। ये प्लेऑफ में आप 1 या 2 फिनिश करेंगे तो आपको बेहतर अवसर मिलेंगे, मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू द फाइनल।
1: जी बिल्कुल, गुजरात के जहन में ये बात बिल्कुल होगी कि सामने एक ऐसी टीम है जिसके लिए इस आईपीएल का कोई भी टोटल जो है वो छोटा साबित हो सकता
0: जी
1: है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 21-23 और 21-10 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला डबल्स में भी रितु पांडा और श्वेत पर्णा पांडा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत को इस प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग में खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिनके मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे।
2: सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन पहले मैच में सिंगापुर के जैसन तेज या हेंग से खेलेंगे, जबकि आयुष शेट्टी का सामना जापान के छठी वरीयता प्राप्त विश्व चैंपियन पदक विजेता कोडाई नराओका से होगा। महिला सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु पहले दौर में चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग से खेलेंगी। किदंबी श्रीकांत का सामना आठवीं वरीयता प्राप्त लो किन यू से होगा। तरुण मल्लीपल्ली का सामना जापान के कोकी वातानबे से होगा। महिला वर्ग में उन्नति हुडा चौथी वरीयता प्राप्त कोनपावी चोचू वोंग से खेलेंगी, जबकि देविका सिहाग की टक्कर जापान की नत्सुकी निदायरा से और तन्वी शर्मा का सामना हिना अकेची से होगा। मालविका बंसोड पहले दौर में कनाडा की वेन यू झांग से खेलेंगे, जबकि अनमोल खरब का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त और पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई से होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि सिंगल्स में भारत की दो पीढ़ियां एक साथ आपको चुनौती देते हुए नजर आएंगी। एक तरफ पीवी सिंधु जैसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन है, दूसरी तरफ तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड, अनमोल खरब। तो एक नई पीढ़ी यहाँ पे आगे बढ़ रही है और कह सकते हैं कि असली उम्मीदें वहीं से होंगी।
0: बिल्कुल है और होनी भी चाहिए, लेकिन इनको अभी तक इतना अनुभव हो गया है, ये बड़े टूर्नामेंट्स में पहले दौर में या दूसरे राउंड में बाहर नहीं होना चाहिए। इनको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक का अनुभव लेना चाहिए, संघर्ष करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी एट द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि बाकी खिलाड़ी खास करके चाइनीज ताइपे से हो या कोरिया से हो या इंडोनेशिया से हो या चाइना से हो ये और जापान से हो, दे आर कमिंग टू कम्पीट। लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है इनको चाहिए कि अपना गेम का एक स्तर उठाएं और फिर सिंधु जैसे बने या साइना नेहवाल जैसे बने या उनसे बेहतर बने। वो भूख शायद नजर नहीं आता है, दिखाना पड़ेगा। ये हम शायद गलत सोच रहे हैं कि उनमें भूख नहीं है, बिल्कुल है भूख, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको दिखाने की ज़रूरत है। उसको अपने जो क्षमता है उसके अनुसार खेलना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, अपनी क्षमता के अनुसार खेलना होगा और उम्मीद होगी कि थॉमस कप में मिले हुए ब्रॉन्ज मेडल की चमक को और तेज करने के इरादे से लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भी कल कोर्ट पर उतरेंगे। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में कांस्य पदक हासिल किया। लक्ष्य ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कोरिया के स्विंगविंग ली को सर्वसम्मत 5-0 के फैसले से हराया, जबकि नरेंद्र नेला को 46 किलोग्राम वर्ग, यश यादव को 50, निवेश पाल को 54 और नमन को 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ। तो लगातार इस प्रतियोगिता से भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और आज का दिन कह सकते हैं इतना ज्यादा ऊंचे बेंचमार्क सेट हो गए हैं इस प्रोग्राम में कि कल 8 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे, तो थोड़ा सा डाउन रहा एशियन अंडर 17 में बॉयज का प्रदर्शन आज।
0: हायर वेट कैटेगरी से, और हमेशा ये होता है शक्ति कि भारत के हेवियर वेट कैटेगरीज के बॉक्सर्स चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन अच्छी प्रदर्शन है अभी तक। आपको कम से कम 10 मेडल शायद नजर आ रहे हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: 5 तो गोल्ड मेडल होंगे और 4 या 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स भी कंफर्म्ड है, गोल्ड या सिल्वर हो सकते हैं, 5 गोल्ड या सिल्वर हो सकते हैं। लेकिन बॉक्सिंग का हाल जो है, जो हो रहा है इधर, साई और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है, ये खेल के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात इन लड़कों से या लड़कियों से जो ताशकंद में खेल रहे हैं वो अपना फोकस वहां पे लगा के खेल रहे हैं, अपने घर में जो हो रहा है उस उस पे ध्यान ना देके अपना बेस्ट गेम देने का प्रयास कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज क्रेडिटेबल।
1: जी बिल्कुल, ये प्रशंसनीय होगा कि वो BFI की तमाम बैटल्स को छोड़ करके जो बैटल वो इस समय रिंग में

0: रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देते हुए और उस पर एक बेहतरीन प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ते हुए। बंगाल ने इंडियन विमेन्स फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। सेतु एफसी और सेसा एफए के बीच आज मुकाबला एक एक से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया। नीता एफए के खिलाफ अपना मैच शुरू होने से पहले मोशाल गर्ल्स के 11 मैचों में 30 अंक थे और ड्रॉ के बाद सेतु के 12 मैचों में 23 अंक हो गए, तो कह सकते हैं बैक टू बैक वापस डिफेंडिंग चैंपियन चैंपियन बन गया ईस्ट बंगाल इस बार।
1: ये अच्छी बात है, महिला फुटबॉल का जो स्तर है वो उठ ही रहा है भारत में, यंग प्लेयर्स आर डूइंग वेल और महिला टीम का रैंकिंग भी विश्व स्तर पर बेहतर है देन द मेंस टीम। लेकिन ऐसे टूर्नामेंट शायद और लंबा करना चाहिए, मैचेस ज्यादा देने चाहिए इन लड़कियों को, तब जाके शायद भारत का स्तर और बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल। और अब रुख करते हैं गुजरात का, जहां गुजरात के गांधीनगर में आज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ हुआ। हालांकि कल से स्पर्धाएं शुरू हो गई थी, जहां कोमल कोहर ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक अपने नाम किया था। तो भारत खेल में प्रदर्शन के तो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, मेजबानी के भी कुछ नए कीर्तिमान उसकी झोली में आ रहे हैं। गुजरात में कुछ भी बड़ा होता है तो नजर जाती है 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए।
1: नहीं, कई सारे विश्व चैंपियनशिप्स होने हैं, कई सारे एशियाई स्तर पे कॉम्पिटिशन होने हैं, पिछले साल एशियन तैराकी कंपटीशन हुआ था, तो बहुत कुछ होने जा रहा है भारत में। और अच्छी बात है कि हम मेज़बानी तो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। मुझे 2010 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स भी याद है, कई लोगों को शिकायत है लेकिन वी डिड अ ग्रेट जॉब। जब हम सोच जब मन में ठान लेते हैं कि कुछ करना है एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट, हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यही देखने को मिल रहा है एशियन वेटलिफ्टिंग में भी। और लेकिन इन रिजल्ट से शायद हम बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि एशियन गेम्स इस साल शायद हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन एनी मेडल इन एशियन चैंपियनशिप इज अ वेलकम मेडल।
0: जी बिल्कुल, वेलकम मेडल होना चाहिए और खासकर उस खिलाड़ी के लिए जो मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ी को रिप्लेस करके इस प्रतियोगिता में आया है। और क्योंकि नजरें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की मेजबानी पर है, तो उम्मीद ये भी होती है जब आप मेजबानी करें तो आपके खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर आए। और जिस तरह 2010 में हुआ था कि हम लोगों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया था तब तक का, उम्मीद होगी 2030 में भी ऐसा देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले आज भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने माई इंडिया के साथ मिलकर देश में 3 जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, जिनका मकसद देश में खेल भावना, रचनात्मकता और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
2: इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभागी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टॉर्च डिजाइन प्रतियोगिता, CWG रील चैलेंज और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टॉर्च डिजाइन प्रतियोगिता में नागरिकों को एक ऐसी टॉर्च का डिजाइन बनाना होगा जो भारत की संस्कृति, विरासत, इनोवेशन, स्थिरता और खेल में उत्कृष्टता से प्रेरित हो। यह प्रतियोगिता 11 मई से 20 मई तक ऑनलाइन चलेगी। प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ एक ही डिजाइन जमा कर सकता है। CWG रील चैलेंज में प्रतिभागी को भारत की उभरती खेल संस्कृति, स्थानीय खेल ढांचे, फिटनेस और CWG 2030 की मेजबानी को लेकर रील बनानी होगी। यह चैलेंज 7 मई से 16 मई तक चलेगा। प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ एक ही रील जमा कर सकता है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 प्रश्नोत्तरी में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें 5 मिनट के भीतर पूरा करना होगा। यह प्रश्नोत्तरी 9 मई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा और प्रत्येक सप्ताह शीर्ष 5 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये कॉमनवेल्थ का आयोजन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और आयोजकों के लिए नहीं, नागरिकों के लिए भी काफी कुछ लेकर के आ रहा है और उम्मीद होगी कि बढ़ चढ़ के लोग प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे अपने अपने हिस्से का।
1: शक्ति, ये खेल सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं है, आई थिंक ये खेल भारत का जो बढ़ावा हो रहा है, जो बेहतरी हो रही है, इसको दिखाने के लिए है और हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। वी शुड ऑल टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स।
0: जी बिल्कुल, चूंकि गेम सिर्फ वही नहीं जो मैदान पे खेला जाए, बात उस स्पिरिट की भी है, उस माहौल की भी है और उस जोश की भी है जो लोगों में नजर आएगा। और चलते चलते बात कर लेते हैं गोंडा में चल रही सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धाओं का समापन हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन पदक विजेताओं की घोषणाओं के बाद अब महिला वर्ग की स्पर्धाएं होंगी, तो रैंकिंग सुधारने का मौका जो है गोंडा में इस समय भारतीय पहलवानों के सामने है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। राजा रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैंप की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा

0: मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

0: Into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: मार्केट के बारे में क्या
4: परफॉर्मेंस का बोलो
5: मार्केट ट्रेंड
3: सुनने में आया कि
6: आज की खबर में
7: पहले ही बोला था ब्रो
8: माय प्रेडिक्शन इज
9: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
10: ये दोस्त ने बोला
11: देवी जी की सुनो
12: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
14: और अब आइए सुनते हैं जोरू का गुलाम फिल्म का गीत अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाजों में

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही? इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की? आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: अभिजीत और सुनिधि चौहान के गाए जोरू का गुलाम फिल्म के इसी गीत के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। पेश है फरमाइश गजलों का प्रोग्राम महफिल।

शेरो नगमे की इस खूबसूरत महफिल में आप सबका स्वागत। कई सारी बेशकीमती फरमाइशी गजलें लेकर महफिल प्रोग्राम में एक बार फिर से हाजिर है आपका दोस्त शैलेंद्र टमटा। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बिना वक्त जाहिर किए आज प्रोग्राम में सबसे पहली फरमाइश शामिल करते हैं, और ये फरमाइश हमें भेजी है लाला बाजार अल्मोड़ा से हमारे दोस्त मुमताज अमान बाबा फरहान संजू सामिया निलोफर अमान और उनके परिवार के बहुत सारे साथियों ने। आप सभी की फरमाइश पर पेश खिदमत है गुलजार का कलाम भूपेंद्र सिंह की आवाज में। तो लीजिए, पेश खिदमत है आज की महफिल की ये पहली पेशकश।

महफिल प्रोग्राम की शुरुआत में श्रोताओं भूपेंद्र सिंह की गाई ये गजल आपने सुनी। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अगला फरमाइशी खत जो हमें मिला है महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से। भेजने वाले हमारे दोस्त हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री धनजे और खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और वंदना नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं। पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग, परी, ललिता, गणेश, कार्तिक और नारायण और उनके बहुत सारे साथी, आप सभी की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं मसरूर अनवर का कलाम, फनकार तलत अजीज।

अपनी फरमाइश की गजलें आप महफिल प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं और इस वक्त मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शैलेंद्र कुमार टमटा। आइए शामिल करते हैं अगली फरमाइश जो हमें मिली है भाटापारा छत्तीसगढ़ दतरेंगी से। हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके बहुत सारे साथी। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं जसवंत सिंह और कविता पौंडवाल की आवाजों में ये गजल। शायर हैं प्याम सईदी।

जसवंत सिंह और कविता पौंडवाल की गाई इस गजल के बाद अगली फरमाइश हमें मिली है कोटवा नारायणपुर बलिया से हमारे श्रोता ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय की, और दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय की, और शेरपुर कलां गाजीपुर से हैं अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की गाई ये गजल, शायर हैं जानिसार अख्तर।

भूपेंद्र सिंह की गाई जान निसार अख्तर की इसी गजल के साथ अपने दोस्त शैलेंद्र टम्टा को आज की महफिल से दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: महफिल। अभी आप फरमाइशे गजलों का ये प्रोग्राम सुन रहे थे FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: श्रोताओ नमस्कार, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओ, यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात IPL की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को

0: अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में आईपीएल के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
1: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली आईपीएल व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। आईपीएल न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी आईपीएल की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल आईपीएल की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी 4th नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए DLF समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेज को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभ

0: निर्मित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की जिनके लिए IPL के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थीं। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी IPL ने शुरू की उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी IPL ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर IPL के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक IPL के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि IPL का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और GDP में IPL के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें तो अब तक IPL प्रबंधन आयकर व GST के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी IPL के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि IPL आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है। साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं। फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक, ये सारे और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
2: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं। कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं। तो सारे उन मानकों पर है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है। खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
2: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
3: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं 8 खेल के या और अन खेल के, उनमें आता है बच्चा एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है। जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके

0: 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
0: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है। कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी

0: सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
1: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल में बच्चे गार्जियन आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियन ले आता है, कोई स्कूल नहीं आ रहा है उनकी संख्या नहीं हो रही है तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई वो उसमें पाबंदी नहीं है।
0: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
1: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की वो कुश्ती वाली है, तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
0: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है?
1: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
0: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, तो उसमें क्या विशेष सुविधा है, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
1: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा, अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
0: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
1: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
0: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
1: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में, तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
0: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीणांचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
1: जी बिल्कुल, विशेष योजना है, इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो उसी का भाग है जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी, ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
0: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
1: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, 3 उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
0: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
1: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेकर 6 प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और यहाँ से 4 तीरंदाजी में बच्चे हैं और 2 कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पे।
0: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
1: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियाँ हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
0: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
1: हम इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
0: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
1: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात

0: पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे, सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है, तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी ऊषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि इतना कितना ही वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो ज़रूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी ऊषा थी, उनने बहुत अचीव किया। हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलिविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोपीय टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज्य तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रांड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रांड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के

0: पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से दो को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से दो को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टेपे सिगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉडरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर एक खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में यह महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख, वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 MHz पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग अटाना बाहर में गाया ख्याल।

श्रोताओं, अभी आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग अडाना बहार में गाया ख्याल सुन रहे थे और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। ये सभी प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ साथ 101.5 MHz पर FM बागेश्वर से भी रिले किए जा रहे हैं।

प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल

0: 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference